आत्मा का आनंद में वास न हुआ, आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और कहें कि आत्मा तो मरती नहीं। तसल्ली के लिए कहें कि आत्मा काटी नहीं जा सकती, लेकिन ये बंधनों में जकड़े रहे, हर जन्म में शरीरों के साथ दुख उठाती रहे, तो विचार करें कि ये अमरता हमारे किस काम की है।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता 90.0 MHz पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 10। कार्यक्रम आधारित है डॉक्टर माधवी गणवीर जी के गजल संग्रहों रेत की नदी और फूल सी गजल पर। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी।
1: साहित्य की पाठशाला की मैं अक्षुण्य विद्यार्थी हूँ। शब्द शब्द जोड़कर भावनाओं के धागे में पिरोकर बांधने का प्रयास करती हूँ। नहीं जानती अपने संग्रह में शिल्प विषय संप्रेषणीयता के मानक पर कितनी खरी हूँ, लेकिन कहते सुना है अच्छा वही लिखते हैं जो कभी खराब लिखता है। कविता लिखना यदि सरल है तो सरल लिखना भी कठिन है। जानती हूँ मुझे उर्दू नहीं आती, अपने अनुभव आसपास के परिवेश बोली को ही आधार मान लेती हूँ। मूर्धन्य साहित्यकारों की फेरिस्त में सबसे पीछे खड़ी हूँ। इन गजलों को पढ़कर कभी तालियां नहीं बटोरी, ये बस एक एहसास है जो मन से मन तक पहुंचती है। ये शब्द है आज के हमारे मेहमान के, जो आज के कार्यक्रम में मेरे साथ और आपके साथ रहेंगे, पर गजलों और कविताओं के माध्यम से। इनके लिए वरिष्ठ साहित्यकार श्री सीएल मिश्र साहिल इस कवित्री के लिए लिखते हैं। वैसे तो गजलकार ने छंद कुंडलियां दोहे गीत गजल सभी में अपनी भरपूर कलम चलाने का प्रयास किया है और उसमें पूर्ण रूप से सफल भी हुई हैं, जो इनकी अमूल्य निधि है। एक और प्रसिद्ध गजलकार गीतकार श्री धर्मराज देशराज जी इनके लिए लिखते हैं। इनकी गजलें नई पीढ़ी के लिए नया अध्याय है। प्रस्तुत गजलें सदियों से चली आ रही उस परंपरा का खंडन करती है जब गजलों में बज्म साकी शराब कासिद खत पैमाने हुस्न और इश्क हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ गजल विधा में इंसानी जज्बात भूख पीड़ा दर्दो गम ने लेकिन लिया है, जो इस गजल संग्रह की खूबी है। एक और कवि समीक्षक समाजसेवी विजय सिंह विजय कुछ इनकी शेर बोल के कह रहे हैं। गजब है इश्क भी देखो नहीं करता यहाँ शिकवा, गमों की चार दीवारी हमें हंसकर निभाना है। समाज को सच्चाई दिखाते हुए शब्दिक सौंदर्य पैदा करती हुई शेर आईना भी हकीकत कहेगा, आंख मुझसे जरा तो मिलाओ। दिल की भावना व्यक्त करती हुई और मनोकामनाओं को उठाती आशावाद से प्रेरित शेर इस जन्म में मिले जो नहीं गम नहीं उस जन्म का पता तो बताना सनम। बहुत ही सादगी के साथ शिकायत करने की कला गजलकारा डॉक्टर माधवी गणवीर जी की कलम में ही दिखाई दिया। मगरूर हम सनम है मगरूर दिल की राहे, मशगूल तुम हुए तो कैसे करें इशारे। आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भारत सोपोरी, लेके आया हूं वितस्ता गीतमाला का एपिसोड 10। आज आपको रूबरू कराऊंगा देश की बेटी शिक्षा विद्वान एक सशक्त महिला छत्तीसगढ़ राज्य से डॉक्टर माधवी गणवीर के साथ, पर उनकी गजलों और कविताओं के माध्यम से वितस्ता गीतमाला के दौरा। आइए शुरू करते हैं आज डॉक्टर माधवी गणवीर के लिखे गजलों गीतों से और साथ ही सुनाऊंगा गीत और गजलें आपके मनोरंजन के लिए भी। आज हम इनके प्रकाशित कविता संग्रह रेत की नदी और फूल सी गजल से कुछ कविताएं सुनाते हैं। पहले शुरू करते हैं कविता संग्रह रेत की नदी से।

डॉक्टर माधवी गणवीर जी लिखती हैं, हो रही जीस्त ये बसर तन्हा, ढूंढती फिर रही नजर तन्हा, वास्ता अब नहीं मुझे उससे, छोड़कर जो गया ये घर तन्हा, चार पैसे कमाने की धुन में छोड़ना पड़ रहा शहर तन्हा, चांद पाने की एक ख्वाहिश में हो रही जिस्त बेहुनर तन्हा, उम्र के इस मुकाम पे आकर अब तो कटता नहीं सफर तन्हा, माँ पिता आज बट गए अब तो, हो गए वो इधर उधर तन्हा, गुनगुनाती है माधवी अक्सर, हम हुए आज इस कदर तन्हा, हम हुए आज इस कदर तन्हा। लेते हैं एक और कविता। जख्म सबको दिखाना नहीं है, इस जहां को रुलाना नहीं है, नेकियां जो करें याद रखिए, नेकियों को भुलाना नहीं है, बेवफा जो हुए देख अपने, ये वफा का जमाना नहीं है, मौत ही है जहां में यकीनी, जिंदगी का ठिकाना नहीं है, जान तुम पर लुटाते फिरे हम, क्या करूं ये बताना नहीं है, रूठना उनका जायज कहूं क्यों, बेवफा को मनाना नहीं है। माधवी दिल है गर खास रब का, दिल किसी का दुखाना नहीं है, दिल किसी का दुखाना नहीं है।

डॉक्टर माधवी घनवीर जी लिखती हैं, ना हम होंगे न ये संसार होगा, जमाने में सदा ही प्यार होगा, यकीन है एक दिन वो आएगा ही, मोहब्बत से भरा संसार होगा। सनम जब रूबरू हम तुम रहेंगे, तभी तो प्यार का इजहार होगा। कभी छत पे अकेले आइएगा, सुकून से चांद का दीदार होगा। जहां नफरत नहीं बिकती मोहब्बत, नहीं ऐसा कोई बाजार होगा। मिले महबूब मुझको आपसा घर, यकीनन दिल मेरा गुलजार होगा। मोहब्बत से नवाजे रब सभी को, नहीं कोई कभी लाचार होगा। तस्वुर में ही बस देखा उन्हें है, हकीकत में भी कब दीदार होगा। मुसीबत में खड़ा जो माधवी के, वही मेरा भी सच्चा यार होगा, वही मेरा भी सच्चा यार होगा। एक और कविता में डॉक्टर माधवी घनवीर जी लिखती हैं, जो दिल दे गवाही हकीकत वही है, सुकून दिल को मिलाता हो चाहत वही है। हमें हाल दिल भी बताना ना आया, तुम्हें भी हमी से शिकायत वही है। मिला जो सहारा सफर में तुम्हारा, मेरी जिंदगी की अमानत वही है। चलो छोड़ आए पुरानी कहानी, भुला दे गमों को मोहब्बत वही है। सफर को सुहाना बना के चले हम, मिलेगी हमें भी नजारत वही है। अगर साथ दे दे कोई भी कहीं पर, भले हम न जाने इनायत वही है। चलो छोड़ आए अदावत कहीं पे, दुआ माधवी की सलामत वही है, दुआ माधवी की सलामत वही है।

लेते हैं कुछ और कविताएं, काव्य संग्रह रेत की नदी से। डॉक्टर माधवी गणवीर जी लिखती हैं, पास आकर जरा मुस्कुरा दीजिए, जिंदगी खूबसूरत बना दीजिए, यूं ही चुप ना रहो यार, कुछ तो कहो बात दिल की, कभी तो बता दीजिए, खिल उठेगा चमन मेरे दिल का सनम, आप अपना हमें घर पता दीजिए, आज महफिल सजी है तुम्हारे पिया, एक नई फिर गजल तो सुना दीजिए, बात बीती बिसारी उन्हें छोड़ दो, ख्वाब आंखों को कोई नया दीजिए, गाव नासूर ये बन न जाए कहीं, जख्म पे आज मरहम लगा दीजिए, जो तुम्हारा कभी बन ही सकता नहीं, यार छोड़ो उससे तुम बुला दीजिए, बेवफा बेवफा ही रहेगा सदा, चाहे दौलत जहां की लुटा दीजिए, काम आए मुसीबत में जो माधवी, दिल से उनको हमेशा दुआ दीजिए, दिल से उनको हमेशा दुआ दीजिए। एक और कविता में डॉक्टर माधवी गणवीर जी लिखती हैं, मुकद्दर आज जो रूठा हुआ है, सितारा फिर कहीं टूटा हुआ है, दगा करके गया है कोई अपना, चलो हम मानते अच्छा हुआ है, लुटा है आशियां मेरा यहां पर, अंधेरा दर्द का बिखरा हुआ है, जरा अपनी खुशी से गालिए हम, गजल से बागबा महका हुआ है, दिखा मुझको तेरा साया यहां पर, मेरी नजरों का फिर धोखा हुआ है, हुई मुद्दत गया परदेश बेटा, अभी तक माँ का दिल बैठा हुआ है, कभी तो रूबरू आकर मिलो तुम, मिले ख्वाबों में भी अरसा हुआ है, सुनाई माधवी ने आप बीती, जहां का चेहरा जो बीगा हुआ है, जहां का चेहरा जो बीगा हुआ है।

डॉक्टर माधवी गणवीर जी की कुछ कविताएं इसी काव्य संग्रह से रखता हूं। वो लिखती है, प्यार का दीप मन में जला लीजिए, उम्र भर जिंदगी का मजा लीजिए, रूठ कर कोई जाए न तुमसे कभी, हर बशर को ही यारो मना लीजिए, खत्म हो जाएंगी दूरियां बीच की, रंजिश आज मन की हटा लीजिए, बाग खुशियों से पल में महक जाएगा, नेक दिल एक साथी बना लीजिए, चैन मिलता नहीं यार खोकर जमीर, चाहे कितनी भी दौलत कमा लीजिए, इश्क का सबक सीखिए तो जनाब, आंख मुझसे तो आओ लड़ा लीजिए, है सुकून ही बहुत ये कहे माधवी, एक पल तो किसी का दुआ लीजिए, एक पल तो किसी का दुआ लीजिए। एक और कविता में डॉक्टर माधवी जी लिखती हैं, अब नहीं कम में गुजारा चाहिए, बाजुओं का हक तो सारा चाहिए, भीख में मोती नहीं मंजूर है, ना रहम का ही सहारा चाहिए, आसमां में छेद कर दूं आज मैं, बस मेरे रब का इशारा चाहिए, क्या हताशा क्या निराशा में?

मैं करूं साथ पर मुझको तुम्हारा चाहिए। हर तरफ हो प्यार का साया सदा, खूबसूरत वो नजारा चाहिए। फिर जन्म हो तो ये हरी है प्रार्थना, हिंद में ही फिर दोबारा चाहिए। माधवी की चाह है सबसे जुदा, रोज खुशियों का पिटारा चाहिए, रोज खुशियों का पिटारा चाहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला जारी है। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं कविताएं जिनको अपने शब्दों से प्यार से संवारा है डॉक्टर माधवी गणवीर जी ने। लेते हैं इनके एक और काव्य संग्रह से कुछ गजलें। बहुत सोचना दिल लगाने से पहले, मोहब्बत की रस्में निभाने से पहले, मेरी याद दिल से मिटाने चला वो, मगर सोच लेना बुलाने से पहले। सदा खुश रखेंगे ये खाई थी कसमें, जरा सोच लेना रुलाने से पहले। नहीं होती आवाज लाठी में उसके, यही सोचना दिल जलाने से पहले। मिटा है सदा दिल तुझी पे ये जाना, सनम देखना पग बढ़ाने से पहले। मिलेगी न मंजिल तुम्हें इस जहां में, नए ख्वाब अपने सजाने से पहले। सलामत रहो माधवी की दुआ है, यही मांगती जान जाने से पहले, यही मांगती जान जाने से पहले। डॉक्टर माधवी गणवीर जी एक और कविता में लिखती हैं, इश्क में आज हद से गुजर जाएंगे, साथ दे दो जरा हम संवर जाएंगे। हाथ में हाथ तेरा सदा जो रहे, एक दिन आएगा यूं निखर जाएंगे। हाल दिल का जरा पूछ लो तुम कभी, देखना हम वहीं मुस्तकर जाएंगे। साथ मिलता रहे हमें सनम का सदा, इस जहां से हम बाहुनर जाएंगे। हर गजल में फतह मिल रही है आजी, वक्त के साथ हम भी निखर जाएंगे। भूल जाऊं तुम्हें कामना तो नहीं, जो मुकदर कहें कर गुजर जाएंगे। खेल में जीत भी हार भी है बनी, सोच कर तो नहीं हम बिखर जाएंगे। है दुआ माधवी की सदा तुम बढ़ो, साथ हम भी तेरे हम सफर जाएंगे, साथ हम भी तेरे हम सफर जाएंगे।

लेते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी दो गजलें काव्य संग्रह फूल सी गजल से। डॉक्टर माधवी गणवीर जी लिखती हैं, खताएं मेरे तुम गिनाते रहोगे, भला कब तलक यूं सताते रहोगे। डगर ये कठिन है मगर राह चलना, दिलो जहां हमें पे लुटाते रहोगे। जरा रूठ जाए सनम हम कभी तो, कहो यार कब तक मनाते रहोगे। तुम्हें दिल दिया है खबर ही कहां है, मुझे कब तलक आजमाते रहोगे। सजा दूं मैं अर्थी तेरे नाम की तो, खता ये बला क्या बुलाते रहोगे। कसम है तुम्हें जो मिटे हो अदा पे, वही नाज नखरे उठाते रहोगे। कहीं हो न जाए रुस्वा यहां यूं, रखो लाज मेरी बचाते रहोगे। सुनाती यही माधवी भी कहानी, सजन ख्वाब हर पल सजाते रहोगे, सजन ख्वाब हर पल सजाते रहोगे। ये आखिरी कविता वो लिखती हैं, जख्म अपने यहां हम दिखाएं किससे, हर स्तम जो हुआ है बताएं किससे। हर तरफ जोर है दुश्मनी का बड़ा, जिंदगी तू बता आजमाएं किससे। मेरे अपने मेरा आशियां लूटते, कौन अपना पराया बताएं किससे। गीत गजलें हमी थे तराने हमी, टूटती सांस हैं गुनगुनाएं किससे। रात का है अंधेरा बड़ा ही घना, तू बता जिंदगी अब डराएं किससे। ये शिकायत सदा ही करे माधवी, सारे अपने ही रूठे मनाए किससे, सारे अपने ही रूठे मनाए किससे।

ये था आज का वितस्ता गीतमाला का एपिसोड 10। आज हमने आपको डॉक्टर माधवी घनवीर जी की लिखी कविताएं गजलें सुनाई, उनके काव्य संग्रह रेत की नदी और फूल सी गजल से। डॉक्टर माधवी जी आपका आभार, आपने हमें ये काव्य संग्रह भेजे। ये कार्यक्रम FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की ओर से आपको सादर भेंट। आप सभी श्रोताओं, आपको ये आज का कार्यक्रम कैसा लगा, हमें अपना फीडबैक जरूर भेजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 7056413010 पर। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मैं भारत सोपोरी आपसे चाहूंगा इजाजत, किसी और कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 10। कार्यक्रम को रिकॉर्ड, एडिट, निर्देशित व प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। आज का कार्यक्रम आधारित था डॉक्टर माधवी गणवीर जी के गजल संग्रहों रेत की नदी और फूल सी गजल पर, सहयोग निया जैन और राहुल अलियान का। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं पहली एनिवर्सरी डिस्काउंट।
1: डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध रहेगा 31 दिसंबर 2024 तक।
0: देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विद स्टार, हम सफर जिंदगी का।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

यो छ एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता हम सफर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त, रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। लघु कथाओं की श्रृंखला में आज एक और नई लघु कथा लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूं।

हाँ मैं आपको ये बताता चलूं, ये जो लघु कथा है ना, ये इन दिनों की नहीं है, ये सारी बातें काफी दिन पहले की हैं। एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज गूंजी, अभी आ रही हूं, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई ना आया, तब डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई कोई है क्या, अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और बहुत जगह जाना है, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। लड़की की फिर आवाज आई, डाकिया चाचा अगर आपको बहुत जल्दी है ना, तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डालकर चले जाइए, मैं आ रही हूं, क्योंकि मुझे तो कुछ टाइम और लगेगा। अब बूढ़े ढाकी ने झल्लाकर कहा, नहीं मैं ही खड़ा हूं, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर भी तो चाहिए इस पर। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाजा खुला, डाकिया इस देरी के लिए खूब झल्लाया हुआ था, अब उस लड़की पर ही चिल्लाने वाला था कि दरवाजा खुलते ही वो चौंक गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, उसका सारा गुस्सा पल भर में ही फुर्र हो गया। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या जिसके एक पैर नहीं थे वो खड़ी थी। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दे दो मेरी चिट्ठी।

डाकिया, चुपचाप डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर ना वहां से चला गया। वो पांच लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी और पिता कहीं बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहते थे। उस लड़की की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई उनके यहां सुबह शाम घर में रहती थी, लेकिन उस दिन काम वाली बाई भी नहीं आई थी। लड़की तो उस रोज घर पे बिल्कुल अकेली ही थी। समय निकलता गया, महीने दो महीने में जब भी उस लड़की के लिए कोई डाक आती ना तो डाकिया एक आवाज देता, और जब तक वो लड़की दरवाजे तक ना आती तब तक इत्मीनान से डाकिया दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में मेलजोल और भावनात्मक लगाव बढ़ता चला गया। एक दिन उस लड़की ने बहुत गौर से डाकिया को देखा तो उसने पाया कि डाकिया के तो पैर में जूते ही नहीं है, वो हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था। बरसात का मौसम आया, फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया तो उस लड़की ने जहां मिट्टी गीली थी ना वहां पर डाकिया के पांव के निशान बने हुए थे, उसने कागज पर ना उन निशानों के चित्र उतार लिए। अगले दिन उसने अपने यहां काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवाकर घर पर रख दिए। जब दीपावली आने वाली थी उससे पहले डाकिया ने मोहल्ले के सब लोगों से त्योहार पर बख्शीश चाही, लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगना, पर गली में आया हूं तो उससे मिल ही लेता हूं। साथ ही डाकिया ये भी सोचने लगा कि त्योहार के समय छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं लगेगा। बहुत सोच विचार कर उसने लड़की के लिए 5-10 रुपए के चॉकलेट्स ले लिए। उसके बाद उसने लड़की के घर का दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? मैं हूं बुढ़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा। लड़की ने आकर दरवाजा खोला तो बूढ़े डाकिये ने उसे चॉकलेट थमा दी और कहा, ले बेटी, अपने गरीब चाचा की तरफ से ये उपहार रख ले। लड़की बहुत खुश हुई, उसने कुछ देर डाकिये को वहीं इंतजार करने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपने घर के कमरे से एक बड़ा सा डिब्बा उठाया और लाकर डाकिये के हाथ में रख दिया और बोली, चाचा मेरी तरफ से भी दीपावली पर आपको ये भेंट है। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो बेटी मेरे लिए मेरी बेटी जैसे ही हो, मैं तुमसे कोई उपहार कैसे ले सकता हूँ। लड़की ने उससे कहा, चाचा इस गिफ्ट के लिए मुझे मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है, कहते हुए बूढ़े डाकिये ने पैकेट ले लिया और बड़े प्रेम से लड़की के सिर पर अपना हाथ फेरा, मानो उसे आशीर्वाद दे रहा हो। बालिका ने कहा, चाचा इस पैकेट को ना अपने घर ले जाकर ही खोलना। घर जाकर जब उस डाकिये ने पैकेट को खोला तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उस पैकेट में एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें भर आई, डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतना फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा, जो उनके वहां पर बॉस थे पोस्टमास्टर, उन्हें फरियाद की और उन्हें कहा कि मेरा तबादला कहीं और कर दिया जाए। पोस्टमास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिया ने वो जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों और रूंगे गले से कहा, सर आज के बाद मैं उसके लिए मैं नहीं जा सकूंगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पांव को जूते तो दे दिए, पर मैं उसे पांव कैसे दे पाऊंगा। तो दोस्तों, सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं होता और ना ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कहते हैं संतोष रखो, ईश्वर का शुक्र अदा करो, क्योंकि जो प्राप्त है ना वही पर्याप्त है। किसी को कुछ मिल जाता है, किसी का कुछ रह जाता है,
और सच पूछो तो लिखने वाले ने गलत तो नहीं लिखा, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिला।

बांधे सबा जाओना नदी के उस पार, पूछ के आओ ना उनसे उनका हाल, क्या करते हैं, कैसी रहती हैं, कैसी सोते हैं, कौन सी करवट लेते हैं वो, उनकी आंखें छू कर आओ ना, उनके माथे को चूम कर आओ ना, उनसे पूछ के आओ ना, वो चुपचाप क्यों रहते हैं, क्या मेरे बारे में कभी सोचते हैं। बादी सबा जाओ न उनके हाथों की लकीरों रेखाओं को पढ़ के आओ न, उनसे जाके कहो न एक बार मिलने आओ न। ऐ बादी सबा जाओ न उनके हाथों की लकीरों रेखाओं को पढ़ के आओ न, उनसे जाके कहो न एक बार मिलने आओ न। ऐ बादी सबा जाओ ना।

दीन मेरा गया ईमान, जहां पे मेरी बन आई उसका क्या, उसने तो बस एक नजर देख लिया, पास बैठा दो घड़ी, वादा किया रुखसत हुआ, उसका क्या, उम्र भर तन्हा तो हमने ये जीवन जिया। उम्रे तन्हाई अपनी बेजारी पे हम रोते रहे, उसका क्या, उसने तो बस एक गहरा दर्द दिया, आंख में मोती चुने और बरसे उस पर रात भर, उसका क्या, उसने तो बस इश्क में हमको पाकीज़ा किया। मैं अपनी रूह का आशिक था और शायर भी था, उसका क्या, उसने अपनी जात में फिर भी न हमें शामिल किया। मैं अपनी रूह का आशिक था और शायर भी था, उसका क्या, उसने अपनी जात में फिर भी

मुझे अब नींद की तलाश नहीं, रातों तक जागना अच्छा लगता है। मुझे है मालूम कि वो मेरी किस्मत में नहीं, मगर खुदा से उसे मांगता हूँ तो उसे मांगना अच्छा लगता है। उसे प्यार करना सही है या नहीं, पर इस एहसास में जीना अच्छा लगता है। कभी हम साथ होंगे या नहीं, पर ये ख्वाब देखता हूँ तो ये ख्वाब देखना अच्छा लगता है। पता नहीं मुझे हक है या नहीं, पर उसकी परवाह करना मुझे अच्छा लगता है। नहीं मालूम कि वो मेरा है या नहीं, पर उसे अपना कहता हूं तो उसे अपना कहना अच्छा लगता है। नहीं मालूम कि वो मेरा है या नहीं, पर उसे अपना कहता हूं तो उसे अपना कहना अच्छा लगता है।

तेरी ही, हर बूंद में तुम्हारी खुशबू की महकार है, और तभी मौतर हुआ है ये जहां। मेरे बरसों के तस्वुर में तुम अचानक यूं दस्तक दे गए, ये मैंने कभी सोचा न था, और ख्याल बनकर उतर जाओगे मेरे वजूद में, इसका तस्वुर मैंने

प्रस्तुत है कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 13। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है जिंदगी के हसीन लम्हे। कार्यक्रम लिखा और प्रस्तुत करता आरजे किरने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, निर्देशन भारत सोपोरी का।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक खास सफर में जिसका नाम है पहलू और गीत। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी और आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज के प्रोग्राम का पहलू है जिंदगी के हसीन लम्हे। आज हम बात करेंगे जिंदगी के उन यादों की जो कभी दोस्तों के संग हसीन थे, कभी खुद के संग तन्हा थे और कभी किसी खास गीत में सिमट गई थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यादों के इस सफर की पहली कड़ी और ये है सुबह की पहली किरणों की बात। क्या आपको वो सुबह याद है जब आपने अपनी पहली सफलता का सूरज देखा था, या वो दिन जब एक नए शहर में नए सपने लेकर सुबह की पहली किरण ने आपको जगाया था। सुबह की रोशनी सिर्फ आंखों को नहीं जगाती, ये दिल के अंदर एक नई उम्मीद जगाती है। सुबह की पहली किरण एक नई रोशनी लाई, सपनों के इस शहर में एक नए राग बनाई, मिट्टी के रंगों से भर दे जिंदगी के कागज और हर मोड़ पर एक नई मुस्कान छुपा जाए।

बचपन के वो दिन जब गुड़िया के घर बनाते थे और चेहरे पर मुस्कान होती थी, वो दिन सच में अनमोल थे। या वो पहले दोस्त जिसे आज तक याद करते हैं। बचपन सिर्फ एक याद नहीं, जिंदगी का एक सबसे खूबसूरत पहला रंग है। मिट्टी के घर और सितारों के सपने, बचपन के वो दिन जो खुद से बेचैन थे अपने, न चिंता थी कल की न डर कोई हार का, बचपन के वो दिन सिर्फ प्यार के थे, प्यार।

बरसात सिर्फ पानी नहीं, यादों का एक सिलसिला है। पहली बार जब बारिश में भीगते वक्त अपनी जिंदगी को महसूस किया था, या वो बरसात जब अपने अपने दोस्त के साथ चाय की प्याली शेयर की थी। हर बूंद के साथ एक नई कहानी बनती है। बूंदों की बातें दिल को सुकून दे जाए, मिट्टी की खुशबू में कुछ बातें छुपाए, बरसात हर दिल में एक नई चाहत जगाए, जिंदगी को गीतों के साथ सुलझाए।

मोहब्बत का पहला एहसास हमेशा यादगार होता है। वो पहली बार जब दिल की धड़कन तेज हुई थी, या वो पहला खत जो आपने किसी के लिए लिखा था, ये एहसास जिंदगी भर के लिए दिल में बस जाता है। मोहब्बत का पहला एहसास एक नई दुनिया दिखाए, हर लम्हा एक नए सपने में ढल जाए, दिल की बातें आँखों से कह दे और गीत बनकर हर रात सुने।

आँखों की बात करते हैं तो ये अपनी कहानियाँ छुपाए रखती है। आँखों में जो कुछ होता है वो शब्दों से ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है। आँखों की गहराई में हमारी फीलिंग्स छुपी होती है और अक्सर हम जो नहीं कह पाते वो आँखों के जरिए सबको दिखाई देती है। आँखों की चमक में दिल की बात छुप जाती है। कभी खुशी तो कभी गम की एक कहानी मिल जाती है।

इसके साथ ही पहलू और गीत का आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है। आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं मोबाइल नंबर 7056413010 पर। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 13। आज के कार्यक्रम का शीर्षक था जिंदगी के हसीन लम्हे। कार्यक्रम को लिखा और प्रस्तुत किया आरजे किरने ने, रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने और निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल। आज का कार्यक्रम गायक महेंद्र कपूर पर आधारित है। पेश करेंगी आरजे किरणी।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनहरे पल और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। आज का ये खास प्रोग्राम हमारे सबके प्रिय सिंगर महेंद्र कपूर जी को समर्पित है। महेंद्र कपूर जी ने अपनी सुरीली आवाज से हमें कई यादगार गाने दिए हैं जो आज भी हमारे दिलों में बसते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महेंद्र कपूर के गानों का ये सफर।

महेंद्र कपूर का जन्म 9 जनवरी 1934 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। गायकी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उन्होंने जल्द ही अमृतसर से मुंबई का रुख लिया। बचपन से ही महेंद्र कपूर महान गायक मोहम्मद रफी से बहुत प्रभावित थे। वे एक तरह से मोहम्मद रफी के शागिर्द थे और उनके प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। शायद यही वजह है कि कई बार उनके गानों में, खासकर शुरुआती दौर के उनके गानों में, रफी के प्रभाव की साफ झलक मिलती है। उनकी दिली इच्छा थी कि वे हिंदी फिल्मों में गाएं। शुरुआत में महेंद्र कपूर ने शास्त्रीय संगीत की तालीम प्राप्त की थी। उनके जीवन में प्रमुख मोड़ उस समय आया जब उन्होंने मेट्रो मर्फी ऑल इंडिया गायन प्रतियोगिता जीत ली। 1957 में हुई इस प्रतियोगिता के जज संगीतकार नौशाद अली थे, जिन्होंने फिल्म सोहनी महिवाल के गीत चांद छुपा है और तारे डूबे को महेंद्र कपूर की आवाज में रिकॉर्ड किया। इसके बाद उनको वी शांताराम की फिल्म नवरंग में गाने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने आधा है चंद्रमा रात आदि गीत गाया, जो कि कामयाब रहा। सी रामाचंद्रन के संगीत से सजे इस गीत ने महेंद्र कपूर के पांव फिल्म जगत में मजबूती से जमा दिए।

महेंद्र कपूर अपने स्कूल के दिनों से ही रफी साहब के साथ थे। उस समय रफी साहब इंडस्ट्री में सबसे बड़े नामों में से एक थे। रफी साहब और महेंद्र कपूर के बीच रिश्ता कितना गहरा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो मोहम्मद रफी की कहीं किसी भी बात को मानने से कभी पीछे नहीं हटते थे। एक बार रफी साहब ने महेंद्र कपूर से कहा था कि हम दोनों साथ में गाने नहीं गाएंगे क्योंकि हमारी आवाज मिलती है। उस दिन से ही दोनों ने कभी साथ गाना नहीं गाया। दोनों ने सिर्फ 1968 में आई फिल्म आदमी का गीत कैसी हसीन आज बहारों की रात है, इस गाने में दिग्गज संगीतकार नौशाद साहब के कहने पर महेंद्र कपूर ने तलत महमूद साहब की आवाज को डब किया था। ये गाना पहले रफी साहब और तलत महमूद को गाना था, लेकिन किसी वजह से गाने में तलत महमूद वाले हिस्से को नए गायक के साथ डब करना पड़ा और इस तरह फिल्म इंडस्ट्री रफी साहब और महेंद्र कपूर ने साथ में अपना पहला और एकमात्र गाना गाया। दोनों के बीच हुए इस पूरे किस्से का खुलासा महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर ने किया था।

इसके बाद उन्होंने भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार और बी आर चोपड़ा के बैनर तले बनी अधिकतर फिल्मों के गीतों के लिए भी आवाज दी। एक समय महेंद्र कपूर की आवाज भारत की जीवंत आवाज कहलाती थी। देशभक्ति गीतों का ख्याल आते ही सबसे पहला नाम उनका ही आता था। लेकिन चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए और किसी पत्थर की मूरत से गाने के उनके गानों में विविधता प्रदर्शित हुई। इसके अलावा वो पहले भारतीय गायक थे जिन्होंने कई अंग्रेजी गाने रिकॉर्ड किए। यही नहीं, महेंद्र कपूर ने लगभग सभी भाषाओं में 25,000 से भी अधिक गाने गाए। कई गीत जो उन्होंने गाए वो सदाबहार हो गए। उनके गानों की दीवानगी ऐसी कि देश ही नहीं विदेशों में भी लोग उनके गीतों के कायल थे। जिस फिल्म इंडस्ट्री में रफी, किशोर और मुकेश जैसे बड़े नाम थे, वहाँ खुद की एक अलग पहचान बनाना शायद महेंद्र कपूर ही कर सकते थे। महेंद्र यूं तो रफी का अपना गुरु मानते थे, लेकिन रफी के कहने पर उन्होंने शास्त्रीय संगीत की सीख ली और उसे बखूबी अपने गीतों में उतारा।

70 के दशक में महेंद्र कपूर बेहद लोकप्रिय थे। मनोज कुमार के लिए उनके गाए देशभक्ति गीत आज भी लोगों के दिलों में बेहद करीब है। प्रीत जहां की रीत सदा हो या मेरे देश की धरती, इन गानों ने देशभक्ति की भावना की जो नींव रखी वो आज भी कायम है। आज भी हर भारतीय जब इन गानों को सुनता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उमड़ आता है। महेंद्र कपूर को मनोज कुमार की आवाज भी कहा जाता है। मनोज कुमार ने खुद को जब दर्शकों के सामने राष्ट्रवादी नायक की भूमिका में पेश किया तो उनके इस छवि को पुख्ता करने का काम किया महेंद्र कपूर की आवाज ने। महेंद्र कपूर को 1968 में उपकार फिल्म के सदाबहार गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। वैसे तो महेंद्र कपूर के जुड़े कई किस्से हैं, लेकिन उनके कुछ किस्से बेहद मशहूर हैं।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का प्रोग्राम सुनहरे पल जारी है। महेंद्र कपूर को हर मूड का गीत गाने वाला समझा जाता था। वो किसी भी तरह के गीत को बेहद ही सरलता और गंभीरता के साथ निभाते थे, चाहे वो देश में सबसे ज्यादा बजने वाला देशभक्ति गीत हो या धर्म अधर्म की सीख देते महाभारत के गीत, या फिर प्यार में डूबे किसी प्रेमी के दिल की आवाज, या जिंदगी की कश्मकश में धीरे किसी शख्स के दिल की आह। हर गीत को हर तरीके गाने की कला था महेंद्र कपूर के पास। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीतों में आज भी वो जादू है कि उन्हें सुनते ही हर कोई उनकी आवाज को खुद की समझ गीत गुनगुनाने लगता है।
1: प्यार वो है के मर कर भी तो

हमेशा मस्त नगमे सुनाने का वादा करने वाले महेंद्र कपूर अगले कई दशक तक संगीत प्रेमियों को अपनी आवाज से मोहित करते रहे। उन्होंने जब फिल्मी जगत में पदार्पण किया वह हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्ण काल था और पार्श्व गायकी में मोहम्मद रफी, मुकेश कुमार और हेमंत कुमार को टक्कर दी और उनके बीच राह बनाना कोई आसान नहीं था। ये एक कठिन चुनौती थी, लेकिन दुनके पक्के और पुरुषार्थ से बड़े कपूर ने न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई बल्कि पार्श्व गायन की विविधता को नए आयाम भी प्रदान किए।

बी आर चोपड़ा से उनका साथ टीवी धारावाहिक महाभारत में भी रहा। धारावाहिक महाभारत के शीर्षक गीत को महेंद्र कपूर ने ही स्वर दिया था। धारावाहिक के प्रारंभ से ही महेंद्र कपूर की आवाज से सजे श्लोक आदि दर्शकों को टीवी के सामने बांधे रखने में बहुत सफल हुए। महेंद्र कपूर ने दादा कोंडके के लिए उनकी अधिकतर मराठी फिल्मों में भी गीत गाए। उन्होंने सी रामचंद्रन और पी नायर, कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे विभिन्न संगीतकारों के साथ काम किया, लेकिन उनकी विशेष जोड़ी रवि के साथ बनी। उन्होंने रवि के साथ मिलकर कई हिट गीत दिए। इन गीतों में चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, नीले गगन के तले, तुम अगर साथ देने का वादा करो और किसी पत्थर की मूरत से आदि गीत शामिल हैं।

अपने लंबे कैरियर में महेंद्र कपूर ने कई पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1968 में उपकार फिल्म के गीत मेरे देश की धरती के लिए महेंद्र कपूर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त 1964, 68 और 1975 में उनको फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र की सरकार ने उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया। देश विदेश में उन्होंने अनेक चैरिटी शो किए। सुनील दत्त और नरगिस के साथ सीमा पर तैनात फौजी जवानों के लिए उन्होंने कार्यक्रम दिए। भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री प्रदान करके इस गायक का मान बढ़ाया। 27 सितंबर 2008 को 74 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से महेंद्र कपूर का निधन हो गया, लेकिन आज भी उनके सदाबहार नगमे कानों में मिश्री गोलते हैं। आज भले ही महेंद्र कपूर हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे एक ऐसी विरासत छोड़कर गए हैं जहां उनकी आवाज का जादू हमेशा बना रहेगा।

ये था आज का सफर महेंद्र कपूर के साथ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अगले किसी कार्यक्रम में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 4। आज का कार्यक्रम आधारित था गायक महेंद्र कपूर पर। प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। रिकॉर्ड एडिट निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की पेशकश।

0: यू आर लिसनिंग FM 90.0 MHz, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: सारयानु मेरी राम राम, जहां दूध दही का खाना यो मेरा हरियाणा, जहां जामदे न्याणे नु सखैदे गाना बजाना यो मेरा हरियाणा, जहां जोड़ा के ऊपर बैठ कर नाना यो मेरा हरियाणा, जहां अंडिया मा दाल पकाना यो मेरा हरियाणा। तो इसे हरियाणा के बारे मा और ज्यादा जानने वास्ता मैं लेकर आई हूँ हरियाणवी कार्यक्रम की बोछार, जिसमा थानू लेकर जाऊंगी अलग अलग गांव के अलग अलग लोगा के बीच मा, अर्थम जान सकांगे मारे हरियाणा के रीति रिवाजा के बारे में। तो सुनना ना भूलियो, अर शनिवार अर रविवार सबेरी 7:05 पा अर दोपहर नु 2 बजे सिर्फ और सिर्फ थारे अपने रेडियो रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का FM 90.0 MHz। धन्यवाद, सुनते रहो FM 90.0 MHz, रेडियो वितस्ता।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: यू आर लिसनिंग FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा। तू मेरी सांसों में बसी है खुशबू की तरह।

ये दिल लगी कहीं छूट न जाए पीछे, क्योंकि अपनी दुआओं में मैं रब से सिर्फ तुम्हें मांगता हूं। हर पल चुरा लेता हूं तुम्हें तुम्हें से। इन शामों में यहीं पे आकर तुम्हें ढूंढता हूं, तुम्हारा इंतजार करता हूं बर्फ पिघलने तक, इन मौसमों के गुम हो जाने तक, कहीं ये दिल लगे ना छूट जाए। चश्मे पर आपको समंदर लिखूं या न लिखूं, तुमसे नजरें मिला के बार बार ये ख्याल आया।

जिंदगी यूं ही गुजर गई बिना बात कहे। इस अंजमन में बातें हुई पर वो बात रह गई जो सीने में दफन।

काश कोई सुनने के लिए फिर से मुझे आवाज देता, मुझे पुकारता, मुड़ के देखता, ठहरता चंद पलों के लिए। शायद शायद मैं अपनी बात कह पाता।

आते ही सुबह का उजाला एक नई उम्मीद को जन्म देती है। फूलों के चमन में बुलबुल शबनमी बूंदों में नहा रहे हैं और ये दौड़ते बादल सारे आकाश को नीला करते हुए खुद को छिपा रहे हैं बादलों की कतारों में। यह हमारी सुबह का आगाज मुस्कुराहट से भरपूर।

परछाइयों के इस शहर में अब खाली है मेरा आंगन। काश कहीं से धूप निकल आती, शायद हम उनके दीदार कर पाते, उनको फिर से अपने सीने की आग से रूबरू कराते और ये बताते कि मैं अभी भी सुलग रहा हूं तुम्हारी मोहब्बत में। तस्कीने दिल की खातिर वादा तो कीजिए, हम जानते हैं आपसे आया न जाएगा।

फिल्मी गीतों का ये खूबसूरत सफर आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। चाहेंगे आपसे इजाजत, रेत पर लिख के मेरा नाम मिटाया न करो, आंखें सच बोलती हैं प्यार छिपाया न करो।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: सारयां नूं मेरी राम राम। जहां दूध दही का खाना यो मेरा हरियाणा, जहां जामदे न्याणे नूं सिखैदे गाना बजाना यो मेरा हरियाणा, जहां जोड़ा के ऊपर बैठ कर नहाना यो मेरा हरियाणा, जहां अंडिया मा दाल पकाना यो मेरा हरियाणा। तो इसे हरियाणा के बारे मा और ज्यादा जानने वास्ता मैं लेकाई हूँ हरियाणवी कार्यक्रम की वो छार, जिसमा थानू लेकर जाऊंगी अलग अलग गांव के अलग अलग लोगा के बीच मा, अर्थम जान सकांगे मारे हरियाणे के रीति रिवाजा के बारे में। तो सुनना ना भूलियो अर शनिवार अर रविवार सबेरी 7:05 पा अर दोपहर नू 2 बजे सिर्फ और सिर्फ थारे अपने रेडियो रेडियो वितस्ता आम सफर जिंदगी का FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ सा। धन्यवाद, सुनते रहो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता।

0: ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज, दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 17, रजत अर्थव्यवस्था सिल्वर इकोनॉमी। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड, एडिट व निर्देशित किया भारत सोपोरी ने। ओहो, मेरी लाडली पोती कहाँ रह गई? ऐसे तो मुझे बड़ा बोलती है कि मैं लेट करता हूँ। लक्ष्मी बेटा, ओ लक्ष्मी, क्या बात, आज मन नहीं है स्टूडियो जाने का?
1: जाना तो है दादाजी, पर मैं थोड़ी सी उलझन में हूँ।
0: अरे मेरी पोती, वो भी उलझन में? लगता आज सूरज गलत दिशा से उगा है। अच्छा बता, किस बात की परेशानी है तुझे?
1: कल इकोनॉमिक्स की क्लास में सर हमें हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा रहे थे।
0: तो इस बात से परेशान है तू, क्योंकि तू इस विषय में थोड़ी कमजोर है।
1: अरे मेरे प्यारे दुदू, पूरी बात तो सुन लो।
0: अच्छा अच्छा सुनाओ।
1: हाँ, तो बीच में सर हमें सिल्वर अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहे थे। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और होमवर्क भी इसी से रिलेटेड दिया है।
0: बस इतनी सी बात पे परेशान हो गई तुम? चलो आज इसी विषय पर स्टूडियो चल के बात करते हैं।
1: हैं, सच में? आपको पता है, फिर तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। मेरा होमवर्क पूरा हो जाएगा और अपने रेडियो श्रोताओं को भी जानकारी मिल जाएगी।
2: बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हीलचेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर आप सभी का स्वागत है। हमारे सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। मैं आपका भरत दद्दू और मेरे साथ है मेरी प्यारी पोती।
1: और मैं हूँ लक्ष्मी, और हम एक बार फिर हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान।
0: ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व सामुदायिक रेडियो संगठन द्वारा बुजुर्गों के सम्मान और उनके कल्याण के उद्देश्य से चलाया जाता है।
1: हाँ तो दुदू, अब बताओ क्या है ये सिल्वर इकोनॉमी यानी रजत अर्थव्यवस्था?
0: भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अटल वयो अभ्युदय योजना बुजुर्गों के लिए आत्मसम्मान और उनके जीवन में सम्मानजनक बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, और इसमें वृद्ध अवस्था के दौरान उनकी भलाई, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, जिसमें बुजुर्गों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, सेवाएं प्रदान की जाती है, और इसी में से एक है रजत अर्थव्यवस्था। इसके साथ ही मंत्रालय ने एक पहल सेज चलाया है। सेज यानी कि ऋषि साधु, जो अनुभवी होते हैं, जो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं, जैसे कि हमारे बुजुर्ग। सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पहल में सरकार ऐसे उद्यमियों की मदद करती है जो बुजुर्गों की जरूरत का सामान बनाते हैं या इससे जुड़ा कोई भी स्टार्टअप करते हैं, तो ऐसे उद्यमियों को सरकार 1 करोड़ तक की राशि देगी।
1: हाँ, ये तो हमने पहले भी अपने बुजुर्ग साथियों को बताया है, मगर ये सिल्वर इकोनॉमी कोई नया मोबाइल ऐप है क्या?
0: नहीं बेटा, मोबाइल ऐप नहीं है, ये एक नई सोच है। दुनिया भर में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और जन्म दर में कमी के कारण बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत जैसे विकासशील देश में भी बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि हो रही है और बुजुर्गों की स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़ी जरूरतें भी बढ़ रही हैं। इस वृद्धि को देखते हुए रजत अर्थव्यवस्था को प्रमुख आर्थिक क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है।
1: मतलब हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए क्या खास है इसमें?
0: बेटा, पहले के मुकाबले आजकल बुजुर्गों के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, इंटरनेट की दुनिया और सबसे बढ़कर उनकी सोच और अनुभव।
1: हाँ, वो तो मैं समझ रही हूँ ददू, लेकिन सिल्वर इकोनॉमी का मतलब?
0: सिल्वर इकोनॉमी का मतलब है कि हम अपने बुजुर्गों के इस अनुभव को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके जरिए नए मौके बना सकते हैं। और तुझे पता है बेटा, अब सरकार और कई कंपनियां बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई चीजें ला रही हैं।
1: तो दुदू, इसका मतलब ये है कि अब हमारे बुजुर्ग लोग सिर्फ आराम नहीं करेंगे बल्कि उनके लिए कुछ खास चीजें बन रही है ताकि उनका जीवन और बेहतर हो सके।
0: हाँ बिल्कुल, अब समझ में आ रहा है तुझे। और बेटा, रजत अर्थव्यवस्था का मतलब सिर्फ आराम नहीं है बल्कि ये बुजुर्गों के जीवन को और भी सक्रिय और खुशहाल बनाने के लिए नई सेवाओं और उत्पादों का विकास है।
2: हमारे बुजुर्ग नहीं है लाचार, क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने खोले हैं हमारे बुजुर्गों के लिए मान सम्मान के द्वार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चलाई है कई योजनाएं जिससे जो है लाचार उन्हें मिलेगा सुदृढ़ आधार, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बुजुर्गों के उत्थान की योजना अटल वयो अभ्युदय योजना में कई योजनाओं का समावेश है।
3: अटल वयो का एक घटक जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों, गृहों, वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों आदि का संचालन और रखरखाव के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।
2: दूसरा है एल्डर लाइन 14567 की सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई ना कोई समस्या आती रहती है, इसके लिए है एल्डर लाइन।
3: तीसरा है जेरियाट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभाल कर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को घटाना है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सकें और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभाल कर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके।
2: चौथा है देश के वरिष्ठ नागरिक के रोजमर्रा के काम अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए SAGE यानी सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। सेज पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा।
3: राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए एक योजना है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से पूरा किया जाएगा।
4: अगला है कैटरेक्ट सर्जरी स्कीम। आयुष्मान भारत के तहत बुजुर्गों का निशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है।
3: भरण पोषण का अधिकार। इस अधिनियम के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार किसे है? ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वे इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद और सौतेले माता पिता भी आते हैं।
4: तो उठा के इन योजनाओं का लाभ आप भी बढ़ाइए अपना सम्मान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित।
1: अच्छा दुदू, तो ये बताइए कि इसमें कौन कौन सी सेवाएं और उत्पाद शामिल है जो बुजुर्गों के लिए खास तौर पर बन रहे हैं?
0: बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने। अब देखो, जैसे जैसे लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी जिंदगी थोड़ी थम सी जाती है, दूसरों पर वो ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कई कंपनियां और सरकारी योजनाएं बुजुर्गों के लिए हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और यात्रा जैसी सेवाएं बना रही है।
1: कैसी सेवाएं दादाजी?
0: जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं, इसके द्वारा बुजुर्गों के लिए विशेष मेडिकल उपकरण, वॉकर्स, व्हीलचेयर और ऐसे मेडिकल एप्स हैं जो उनकी सेहत को मॉनिटर करते हैं। साथ ही आर्थिक अवसर बनाए जाते हैं, जैसे बुजुर्गों के लिए रोजगार या पार्ट टाइम काम और विभिन्न उत्पादों के लिए बाजार जो उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद करें।
1: अच्छा, और क्या क्या होता है इसमें दादाजी?
0: लक्ष्मी बेटा, रजत अर्थव्यवस्था के माध्यम से अब बुजुर्गों के लिए फिटनेस और योग कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, जो उनकी शारीरिक सेहत को बनाए रखती है। और हाँ, बहुत सी कंपनियां और संस्थाएं बुजुर्गों के लिए घर पर ही सेवा देने का काम कर रही हैं।
1: घर पर ही सेवा देने का काम मतलब दादाजी?
0: जैसे होम केयर, जिसमें डॉक्टर या नर्स घर पर आकर उनकी देखभाल करती है, या फिर वृद्ध आश्रम जो घर जैसा माहौल देते हैं और जहां बुजुर्ग आराम से रह सकते हैं।
1: ओ, तो ऐसी बात है।
0: और लक्ष्मी बेटा, इसमें बुजुर्ग व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं, चाहे वे पेंशन से अपनी खपत करें या फिर छोटी व्यवसायों में काम करें। इसके अलावा रजत अर्थव्यवस्था से जुड़ी उद्योगों से नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए हेल्थ केयर सेवाएं, वृद्धों के लिए यात्रा और पर्यटन, और विशेष रिटायरमेंट हाउसिंग जैसी सेवाओं से रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं।
1: एक बात तो बताओ दद्दू।
0: हाँ पूछो ना। एक क्या तुम दो बातें पूछो।
1: क्या बुजुर्ग अब आराम से यात्रा भी कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत?
0: बिल्कुल, अब बहुत सी ट्रेवल एजेंसियां और कंपनियां बुजुर्गों के लिए खास यात्रा पैकेज डिजाइन करती है। इन पैकेजों में बुजुर्गों के लिए आरामदायक यात्रा, सुविधाजनक होटल्स और अगर जरूरत हो तो मेडिकल सुविधाएं भी दी जाती है।
1: फिर तो इसके द्वारा बुजुर्गों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग भी आसान हो गई होगी।
0: कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने बुजुर्गों के लिए अपनी वेबसाइट्स और एप्स को यूजर फ्रेंडली बना दिया है। ऐसे एप्स पर बुजुर्ग आसानी से अपनी पसंद की चीजें मंगवा सकते हैं, और इसमें 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी रहता है, ताकि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो ये तुरंत पा सके।
1: सही बात है दद्दू, हमारी सरकार बुजुर्गों के हित में निरंतर प्रयासरत है। अटल व्यय अभ्योदय योजना और रजत अर्थव्यवस्था इसके उदाहरण है।
0: बुजुर्गों के लिए मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियां भी रजत अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। ये यात्रा सामाजिक संपर्क और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और वृद्ध व्यक्तियों के जीवन को सुखमय बनाने में मदद करती है।
1: मतलब दुदू, रजत अर्थव्यवस्था वृद्धों को समाज में अपनी पहचान और आत्मसम्मान बनाए रखने का अवसर देती है और एक सक्रिय सशक्त भागीदार के रूप में समाज में शामिल करती है।
0: बिल्कुल सही बेटा, और बुजुर्गों की बढ़ती संख्या और उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए रजत अर्थव्यवस्था कई व्यापारिक अवसरों को जन्म दे रही है। इससे व्यापार और उद्योग को भी लाभ हो रहा है और इससे अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है और बुजुर्गों का भी भला हो रहा है।
1: ओह, तो इसका मतलब है कि इससे बुजुर्गों को आराम और खुशियों से भरा जीवन मिल सकता है। सही कहा ना दादाजी?
0: हाँ तो लक्ष्मी बेटा, अब तो समझ गई हो सिल्वर इकोनॉमी के बारे में?
1: बिल्कुल ददू, इससे तो मेरा होमवर्क भी काफी आसान हो जाएगा।
0: तुम्हारे होमवर्क को और आसान किए देता हूँ इस रेडियो नाटक के द्वारा।
1: वाओ ददू, यू आर सो जीनियस। चलो फटाफट नाटक सुनते हैं।
5: कितना अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके। अगर मैं कहूँ कि आपकी मदद के इंतजार में कोई है जो आपकी राह देख रहा है, वो है हमारे वृद्धजन। दोस्तों, आज वृद्धजनों की जरूरतों और उनके मदद के लिए होती लोगों की कमी को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने आप जैसे युवाओं को जेरियाट्रिक केयर गिवर्स बनने का मौका दिया है। वो युवा या युवतियां जिन्हें लोगों की मदद कर, स्पेशली बुजुर्गों की मदद कर दिल में होती है खुशी, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ट्रेनिंग पाने के बाद आप बुजुर्गों की उचित देखभाल

0: प्रस्तुत है नाटक रजत अर्थव्यवस्था एक नई दिशा, और इसमें जो पात्र है वो है रमेश, जो युवा और उत्साही अर्थव्यवस्था पर रुचि रखने वाला है। नमिता वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण में दिलचस्पी रखने वाली सामाजिक कार्यकर्ता। संजीव एक अर्थशास्त्री जो रजत अर्थव्यवस्था पर शोध कर रहे हैं। सारिका एक युवा उद्यमी जो वृद्ध अवस्था से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है।
1: नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे बुजुर्गों के लिए उनके बुढ़ापे में वरदान जैसा है, वह है रजत अर्थव्यवस्था।
2: मुझे तो ये शब्द नया सा लग रहा है रमेश, लेकिन जैसे कि मैं समझ पा रही हूँ, रजत अर्थव्यवस्था से आपका तात्पर्य वृद्ध लोगों के लिए बनी अर्थव्यवस्था से है ना?
0: बिल्कुल नमिता, रजत अर्थव्यवस्था का मतलब है वो आर्थिक गतिविधियाँ जो वृद्ध जनसंख्या की बढ़ती संख्या से जुड़ी हुई है। इसमें वृद्धों के लिए सेवाएं, उत्पाद और सुविधाएं शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दशकों में वृद्धों की संख्या तेजी से बढ़ेगी और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा अवसर बन सकता है।
3: बिल्कुल, मैं तो खुद इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। मेरी कंपनी वृद्धों के लिए विशेष उत्पाद और सेवाएं देती है, जैसे कि स्वास्थ्य निगरानी उपकरण, घर में सुरक्षा की सेवाएं और मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने वाला कार्यक्रम।
1: ये तो सही है, लेकिन क्या हमारे समाज में वृद्धों के लिए इतनी सुविधाएं हैं जितनी उन्हें चाहिए?
2: ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है रमेश। फिलहाल तो हमारी नीतियों और सेवाएं वृद्धों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें एक समग्र दृष्टिकोण की जरूरत है, जिसमें बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक सहभागिता के साथ साथ आर्थिक अवसर भी प्रदान किए जाएं।
0: सही कहा आपने नमिता, अगर हम रजत अर्थव्यवस्था को सही तरीके से समझें तो ये हमारे समाज के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। इसमें वृद्धों के लिए ही नहीं बल्कि ये उद्योगों को भी एक नया आयाम देगा। उदाहरण के लिए हेल्थ केयर, आवास, यात्रा और यहाँ तक कि वृद्धों के लिए टेक्नोलॉजी की डिवाइसें भी विकसित हो सकती है।
3: और यदि हम वृद्धों को सशक्त बनाएंगे तो वे अपने जीवन में खुशहाल और सक्रिय रहेंगे और ये समाज की समृद्धि में भी योगदान देगा। मैं मानती हूँ कि रजत अर्थव्यवस्था एक सुनहरा अवसर है।
2: बिल्कुल सारिका, हमें इसे समझने और अपनाने के लिए एकजुट होना होगा। यही समय है कि हम अपने वृद्ध नागरिकों के लिए एक बेहतर भविष्य तैयार करें।
0: ठीक कहा आपने नमिता, इस दिशा में काम करके हम रजत अर्थव्यवस्था के लाभ का पूरा फायदा उठा सकते हैं
3: और यही हमारी जिम्मेदारी भी है।
0: ये रेडियो नाटिका सुनकर ऐसा लग रहा है कि 60 साल के बाद मुझे भी खुद को सक्रिय बनाए रखने के लिए कुछ सीख लेना चाहिए।
3: राइट दादू, 60-65 साल के बाद जब व्यक्ति नौकरी से सेवानिवृत्त होते हैं तो उनकी बरसों से चल रही एक सक्रिय दिनचर्या में अचानक से एक खालीपन आ जाता है। बहुत से लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। किसी न किसी रूप में खुद को सक्रिय बनाए रखने के लिए कुछ लोग गायन, बागवानी जैसे कामों में अपने आप को जोड़ लेते हैं।
0: सच बात है, यदि शरीर सक्रिय नहीं रहता और मन होता है दिन भर बिस्तर पर पड़े रहो
3: और फिर दिमाग भी सुस्त होने लगता है। कहा जाता है अपने न्यूरॉन्स को एक्टिव बनाए रखने के लिए, ज्यादा समय तक जिंदा रहने के लिए भी शरीर की सक्रियता जरूरी है, वरना हर दिन अलग अलग डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। चलिए कुछ बुजुर्गों से मिलते हैं।
4: नमस्कार, मेरा नाम भास्कर नाथ दास है। मैं 61 वर्ष का हूँ, एक साल पहले रिटायर हो गया हूँ। सामान्यतः रिटायर होने के बाद अक्सर लोग बात करते हैं, भाई अब आपका समय कैसे व्यतीत होता है। ये सोच तो हमारे मन में भी थी, रिटायरमेंट होने से पहले ही, सेवानिवृत्त होने से पहले ही हमने सोचा था कि कैसे कर सकते हैं। मैं जैसे अपना समय व्यतीत कर लेता हूँ उसके बारे में कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। रिटायरमेंट होती ही मैंने संघ को ज्वाइन किया। सवेरे हर दिन शाखा लगती है, सवेरे एक निश्चित समय पर लगती है, जैसे 6-7 इसका जैसे भी कन्वीनियंट हो, समय के अनुसार, मौसम के अनुसार जो हमारा व्यायाम होता है, एक आध घंटे का व्यायाम रहता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे समाजी जो

0: समस्याएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, और जो हमारे समाज की सेवा हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बहुत सारे बातें करते हैं। मेरे मन में सोशल सर्विस कर लो जो आप समाज के लिए दे सकते हैं, सेवा के लिए दे सकते हैं। हर दिन 6 से लेके 8, 8:30 तक हम इसमें रह लेते हैं, तो सवेरे वाला टाइम तो ऐसे गुजर जाता है। इसके अतिरिक्त जो काम हम सर्विस के द्वारा नहीं कर सकते हैं, उसका समय हम वो काम हम सर्विस के बाद कर सकते हैं। जैसे मेरे को गीता पढ़ने का बहुत एक मन में इच्छा थी, तो वो मैं कार्य भी कर लेता हूँ। गीता एक learngeeta.com एक संस्था है जो गीता ऑनलाइन फ्री पढ़ाती है, सिखाती है कैसे पढ़ना है, तो मैंने वो ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने में उसमें लगभग 1 साल लग जाता है, जब तक वो पूरा L1 से लेके L4 तक 4 कैटेगरीज में सिखाते हैं पढ़ना, तो 1 साल में वो पूरा हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे जैसे मैंने बोला कि सेवा करने का बड़ा समय रहता है सर्विस के बाद, जो हम सर्विस के द्वारा नहीं कर सकते हैं, तो मैं गीता परिवार में सेवा दे रहा हूँ। जूम पे मैं कक्षाएं होस्ट कर लेता हूँ, तो इसका समय मैंने निर्धारित किया सवेरे और शाम के। मैं सवेरे 1 घंटा 40 मिनट का कक्षा ले लेता हूँ, होस्ट कर लेता हूँ, और शाम को 9 बजे और 10 बजे कक्षाएं होस्ट कर लेता हूँ। दिन में बाकी जो घरेलू काम होते हैं, और जो आपको रेस्ट भी चाहिए, फिर आदमी थोड़ा सा रेस्ट करके लंच तक को कर जाते हैं, उसके बाद अगर दिन भर का कोई काम है तो उसमें हम अपना समय आराम से निकाल सकते हैं। और अगर सोशल समाज में कुछ करने का आपको इच्छा है तो उसके लिए भी आप अपना समय निकाल, जैसे हम कर लेते हैं, बस्तियों में जाते हैं, जो हमारे भाई लोग रहते हैं उनकी समस्याएं उनके पास जाते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, और उनकी सेवा उनकी समस्याओं का अगर कुछ समाधान हम कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको एक्चुअली समय बहुत कम है, रिटायरमेंट के बाद बहुत कम समय मिलता है। अगर आप जो काम आप सर्विस के द्वारा नहीं कर पाए, और अगर आपकी इच्छा है कि वो सर्विस के बाद आप कर सकें, रिटायरमेंट के दौरान कर सकें, तो एक निश्चित करके आप कर सकते हैं, आप दिनचर्या बना के आप उसको कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे सर्विस के दौरान शादी के पर्व होते हैं, अपने जो समाज में बहुत सारे ऐसे धर्म के कुछ कार्यक्रम होते हैं जिनमें हम जा नहीं सकते थे सर्विस के दौरान, वह आज चूंकि हमारे पास समय है तो हम बड़े अच्छे से जा सकते हैं, समय निकाल के जा सकते हैं, और अपना जो सनातन धर्म की जो शिक्षा थी जो हमको नहीं, जिसके लिए हमको समय नहीं मिला था अपने जीवन में सर्विस के दौरान, तो वो उसमें अपना समय लगा लेते हैं और हम सीख लेते हैं, और हम प्रयास कर लेते हैं जिनको ये अवसर नहीं मिला है तो उनके पास जाते हैं, उनको समझाते हैं कैसे कर सकते हैं। तो गीता परिवार में मैं अपना टाइम एक चार के लिए भी बहुत सारा समय दे देता हूँ। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम कहीं होता है तो हमको पता लग जाता है, हम वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे हम अपने जो हमारे भाई बंधु हैं उनको समझाते हैं कि हम गीता कैसे पढ़ेंगे जीवन में। गीता जो है जीवन में कोई भी समस्या है उसका सार है गीता, क्योंकि एक बार जब हमने पढ़ लिया तो ये चीज़ समझ आ जाती हैं कि गीता की अहमियत कितनी है, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। तो हम लोगों को समझाते हैं कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो हम इस तरह से हमारा समय तो ऐसे भी व्यतीत होता है कि मतलब कम पड़ जाता है, हमारा समय बचता नहीं है, रेस्ट करने का भी कभी कभी समय नहीं मिलता है। आदमी जिसके पास भी ऐसा कुछ मन को करने को जो सर्विस के द्वारा वो नहीं कर पाया है और वो कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको संगीत का शौक है तो आप संगीत सीख सकते हैं, आप गा सकते हैं। योग के लिए आपको योग करने का आप बहुत समय है तो आप योग में भी अपना समय कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा समय व्यतीत नहीं होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।
1: सुनिए सुनिए सुनिए, आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन IPSRC के बारे में। इस योजना के तहत सहायता कार्य करने के लिए एजेंसियां प्रदान की जाएंगी, जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय और पात्र गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थान, जिससे हमारे बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में आएगा सुधार। इसके तहत वृद्ध जनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और एंटरटेनमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, साथ ही उन्हें सक्रिय और उत्पादक बुढ़ापे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनका जीवन मूल्य और बढ़े। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के घरों, महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का रखरखाव, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना, के तहत आने वाले घर भी शामिल हैं, जहां उन्हें निःशुल्क भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब वरिष्ठ नागरिकों को मिला उनका सम्मान, जीवन होगा उनका आसान। हमारे बुजुर्ग, हमारा स्वाभिमान। सीआरए द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी।
2: भाई, हमारे बुजुर्गों की बातचीत सुनकर मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझे खुद को और सक्रिय बनाना चाहिए।
3: आप तो वैसे ही बहुत सक्रिय हो ददू, आपसे तो देश भर के बुजुर्ग सक्रिय होना सीख रहे हैं इन दिनों। और रजत अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा और सीख ये है कि कोई भी उम्र हो, हम नए अनुभवों और ज्ञान से कभी नहीं रुकते।
2: तो ये था हमारा खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, जो प्रसारित किया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व सामुदायिक रेडियो संगठन के सौजन्य से, जिसमें हमने आज बात की सिल्वर इकोनॉमी की और उसके बारे में।
3: आने वाले कार्यक्रमों में भी हम बुजुर्गों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आपके साथ बात करते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। मुझे लक्ष्मी
2: और मुझे भरत ददू को दीजिए अनुमति।
3: नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान एपिसोड 17 रजत अर्थव्यवस्था यानी सिल्वर इकोनॉमी। इस एपिसोड में लक्ष्मी के किरदार को आवाज दी आरजे किरनी ने, भरत दद्दू के किरदार को आवाज दी भारत सोपोरी ने। आपने इस एपिसोड में नाटक सुना, उसमें रमेश के किरदार को आवाज दी राहुल अलियान ने, नमिता के किरदार को आवाज दी निया जैन ने। इस एपिसोड में आपने सुनी वॉइस बाइट वरिष्ठ नागरिक श्री भास्कर नाथ दास जी की। श्री दास, आपका आभार। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड, एडिट एवं निर्देशित किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: एक ही टॉर्च में, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। हाँ मैं भी डर जाता हूँ, मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डर जाता हूँ, मैं सैलाब गुमराह से डर जाता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ, मैं खुद से लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर मैं बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की ये सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। धन्यवाद।

0: Amore mio, dove sai tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

0: दिल से।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला गेट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

تویچو بوزان نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہوں

0: राम राम हरियाणा,
1: राम राम हरियाणा के आज के अंक में स्वागत करूंगा मैं प्रीतम जी डट जो
0: ठीक हो सर।
1: दोस्तों राम राम हरियाणा के आज के अंक में मैं वीरेंद्र सिंह चौहान आप सबका स्वागत करता हूं। राम राम हरियाणा के आज के अंक में मैं हूं हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के परिसर में अपने सभागार में सभा कक्ष में। यहां पर मेरे साथ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षु मित्र बैठे हुए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में हर दिन की तरह हरियाणा के विभिन्न सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के प्रतिनिधि अपने अपने स्टूडियो से वो सीधे जुड़ चुके हैं। प्रीतम जी मेरे सामने मुस्कुरा रहे हैं, दाएं बाएं भी देख रहे हैं। प्रीतम जी के साथ, प्रीतम जी अपना रेडियो दादरी संचालित करते हैं। प्रीतम जी के साथ कहिए या ठीक ऊपर के कोने में हरत सोपोरी जी हैं। हरत सोपोरी जी वो शख्स हैं जिनको हम थोड़ी देर पहले ऑफलाइन याद कर रहे थे कि ये कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए। आप प्रकट हुए भाई, प्रकट कृपाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरत सोपोरी जी मित्रों मूलतः कश्मीर के रहने वाले हैं, लेकिन अनेक वर्षों से आप रहते हैं अंबाला में, और अंबाला में आपने एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया है जिसका नाम है रेडियो वितस्ता। वितस्ता क्या है, जब भारत जी की बारी आएगी तो वितस्ता की जानकारी एक बार भारत जी दे देंगे। कार्यक्रम के आज के पहले चरण में 10 12 15 मिनट ये जो प्रतिभागी हमारे साथ हैं आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम के, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत जी और ललित जी को भी मैं देख पा रहा हूँ, ललित जी ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं, सिडनी से। जो अन्य दो मेहमान हमारे साथ हैं गुरविंदर जी, उनका परिचय बाद में कराएंगे। पहले एक बार हम यहाँ हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान से कुछ बातें करेंगे, और वो बातें क्या होंगी, क्या विषय है, इसके लिए पहले मैं कहूंगा कि अजय हमारे सांगवान जी की तरफ कैमरे को ले जाएं। कमलदीप सांगवान जी उस कार्यक्रम का आधारभूत सा परिचय दे देंगे जो कार्यक्रम आज जो प्रशिक्षण का हमारे यहाँ शुरू हुआ है। फिर प्रतिभागियों से बात करेंगे, कुछ उनसे जानेंगे। ये सब वो योद्धा हैं जो धरातल पर गांव के विकास की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन कौन है ये बताएंगे कमल जी। कमलदीप जी
2: राम राम, हरियाणा के सभी श्रोताओं को राम राम। मैं कमलदीप सांगवान, इस कार्यक्रम का संयोजक, आप सबका स्वागत करता हूं। और ये जो कार्यक्रम है हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम है युक्त धारा पर, युक्त धारा वीपी जी राम जी का नियोजन का एक पोर्टल है जिसमें गांव की योजना तैयार होती है आधारभूत आंकड़ों पर। तो ये हमारे पास आज फतेहाबाद और रोहतक के रिक्त कार्यक्रम अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता और लेखा सहायक हैं सभी खंडों से। तो इनका हम 3 दिन का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं युक्त धारा विषय।
1: और जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनका परिचय भी तो आपको ही कराना पड़ेगा ना सांगवान जी।
2: और हमारे साथ हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, और
1: जो विशेषज्ञ नहीं है ये बताना पड़ेगा, विशेषज्ञ तो विशेषज्ञ कहलाएंगे जी।
2: और हमारे साथ हैं सोलंकी जी जो हरियाणा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था और पंचायती राज संस्था हैदराबाद से हैं। सोलंकी जी को हम कहें तो भू सूचना तंत्र के बहुत, जब से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद की स्थापना हुई है तब से ही मैं इनको भू सूचना तंत्र के एक आधारभूत रिसोर्स पर्सन कहूं या फिर इसका उनका विशेष एक्सपर्ट या श्रोता व्यक्ति कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो बहुत समय से जो भी पूरे भारतवर्ष में
1: हरियाणवी में कहना तंत्र का, हरियाणवी में कहना हो तो पुराने गारडू कहते हैं।
3: सर एक
1: शब्द सुना है किस किसी ने,
3: एक कॉलर लाइन पर है
1: जी। हाँ बिल्कुल, कॉलर को सुन लेंगे हम बीच में। हेलो, हाँ जी बताएं, कौन बोल रहे हैं?
4: मैं गांव अछेड़ा से बोल रहा हूँ, जिला सर के दादरी से सर।
1: गांव का नाम एक बार बताइए, मैंने समझने में जोर लगेंगे मेरे।
0: तो मेरे गांव से आगे सर,
4: मैं गांव अछेड़ा से बोल रहा
1: हूँ सर। नाम बताइए।
4: बास अछेड़ा लिंक रोड है जी।
1: अच्छा बास अछेड़ा,
4: छह बजे पार रखा है।
1: कब से?
4: छह महीने से पार रखा है बास अचेना लिंक रोड,
1: ठीक है जी,
4: और उस पे रोड डाल के छोड़ रखा है ठेकेदार ने, उसका कोई समाधान नहीं करेगा।
1: अच्छा ये बताइए, आपकी सड़क छह महीने से देसी में कह रहे हो आप, जो कर मैन्यू क्यों नहीं कॉपी करने के बाद छह महीने तक पाड़ के बगा रखा है, तो इस छह महीने में आपने आज जो हमें फोन किया, इसके अलावा आपने किस किस का दरवाजा खटखटा लिया?
4: हमें सर ठेकेदार से कई दफा बोल चुके हैं हम।
1: अच्छा
4: ठेकेदार बोल रहे आज मेरा वो तारकोल नहीं मिल गया,
1: तारकोल घना महंगा हो रहा है, डबल वेट हो रहा है, समस्या तो यही है, ठीक कह रहे हैं आप। तारकोल की बिटुमिन की दरें, ये जो इराक और अमेरिका का युद्ध है इसके कारण हॉर्मुज की खाड़ी में अटके हुए जहाजों के कारण वो बहुत महंगा हो रहा है, और महंगा मतलब दुगने के आसपास दरें हैं उसकी, ये उसका कारण हो सकता है। खैर एक काम करिएगा, हालांकि समस्या जटिल है, इसका कोई जादुई समाधान मेरे पास तत्काल नहीं है कि मैं ऐलान कर दूं कि ले भाई ईवी ले और छड़ी छड़ी घुमाई और कल सड़क चालू हो जाए। एक कष्ट करिएगा आप, प्रीतम जी के नंबर पर या स्टूडियो के नंबर पर जिस पर आपने कॉल किया इस पर ठेकेदार का नंबर भेजिएगा, मैं बात करूंगा और वहां के अधिकारियों से भी पूछूंगा कि क्या समाधान हो सकता है।
4: ठीक है,
1: कई बार कुछ चीजें हाथ की नहीं होती, ये वैसा सही मामला है। धन्यवाद आपका, नाम एक बार फिर से बताइएगा।
4: सुबे सिंह नाम है जी मेरा, गांव अचेना से।
1: जी जी सुबे सिंह जी धन्यवाद आपका। ये वास्तव में ना आप लोगों को भी ध्यान होगा, आप सब जो प्रतिभागी यहाँ पर बैठे हैं, कि पूरे प्रदेश में नहीं, मामला तो देश भर का है। युद्ध का असर और जिन चीजों पे हो रहा है वो तो हो ही रहा है। ये जो सड़क निर्माण का काम है, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है या पीडब्ल्यूडी के और दूसरे काम है, सब कामों पर उसका असर आया हुआ है। अभी जो दो दिन का राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन हुआ, उसमें भी सब राज्यों के जो हमारे मंत्री थे, उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज जी के सामने, हमारे मंत्री जी समेत, कृष्णलाल पवार जी समेत, सबने उनके सामने यही कहा जी इसका कोई राग और काट दो। तो एक तो ये निकल सकता आने वाले कुछ दिनों में, जैसे युद्ध अगर टिका रहा, भरोसा तो है नहीं, अब ट्रंप ताऊ के मूड का तो पता नहीं, आज न्यू कह दे भाई निपट गया और आधे घंटे पीछे छटकू मिसाइल दे मिसाइल, ऐसी सी वोलेटाइल सिचुएशन है। बट उम्मीद करते हैं कि स्थिति सामान्य हो और हम बहुत जल्द सड़कों का निर्माण जहां अटका हुआ है उसको सामान्य होते देखें। नागरिकों को होने वाली असुविधा समझी जा सकती है, किसी की सड़क छह महीने की पाड़ के बगैर रखी हो तो वो युद्ध तो उनके लिए हो गया, घड़ा तगड़ा युद्ध हो जाता है। जी बहुत धन्यवाद महाराज, आपने हमें संपर्क किया इस कार्यक्रम में। हम कहां पर थे?
3: सांगवान जी बोल रहे, सांगवान जी बात कर रहे थे
1: जी, सांगवान जी को बीच में टोक दिया था हमने ऐसा लगता है।
3: हाँ जी, कॉल ने टोका था सर, हमारी क्या हिम्मत है।
2: सोपोरी जी मैं याद कर रहा था आपको, बहुत दिन तक नहीं,
1: इन्होंने कहा कि सोपोरी जी कहाँ गए,
2: और मेरी इच्छा जम्मू कश्मीर जाने की कोई बुला नहीं रहा, क्या बता आप बुला लो, हम दोनों कट्टे चलेंगे
1: ये अम्बाड़ा बुला सके महेश नगर के दौरे।
3: नहीं नहीं नहीं सांगवान जी, सांगवान जी इब जाना है,
1: बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो दो तीन चार शब्द आए हैं अभी इस प्रारंभिक चर्चा में, एक शब्द युक्त धारा, एक शब्द वीबी जी राम जी, और एक शब्द बताइए ऐसा जो जो साधारण लोगों के लिए समझने का शब्द है। आप तो काम कर रहे इतने सालों से, जीआईएस, जीआईएस को हिंदी में क्या कहेंगे?
2: भू
1: सूचना तंत्र। तीन शब्दों पर हम बात करेंगे। सांगवान जी एक बार बता दें कि इस कार्यक्रम में जो प्रतिभागी हैं ये किस किस श्रेणी के लोग हैं, ये महान विभूतियां करती क्या हैं, ये पता चल जाए तो फिर इनसे बात करेंगे, इनसे भी पूछेंगे कुछ।
2: तो जैसा कि मैंने बताया था, ये अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी हैं जो पहले मनरेगा के अंतर्गत कार्य करते थे, वे एक बीमारी से वीबी जी राम जी के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, और लेखा सहायक हैं और कनिष्ठ अभियंता है, तो ये सारे वीबी जी राम जी के तहत कार्य कर रहे हैं। और ये सभी नियोजन में जो गांव की योजना है, जो ग्राम पंचायत का विकास का नियोजन है, उसमें भी एक इनकी अहम भूमिका रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं खंड स्तर को सशक्त करने में इनका बहुत मुख्य योगदान है। तो ये हमारे जो है ना प्रतिभागी
1: आज भारत जी
3: जी
1: अनिल जी भी विराजमान है। सब मित्रों की जानकारी के लिए मैं फिर से दोहरा दूं, जून महीने की अंतिम तारीख तक गांवों में हम रोजगार मांगने वाले नागरिकों को, ग्रामीणों को, जिस योजना के अंतर्गत गारंटी शुदा 100 दिन का रोजगार देते थे, उसका नाम था महात्मा गांधी नरेगा, मनरेगा ऐसा कहते थे ना, 30 जून को मनरेगा की विदाई हो गई। 30 जून को मनरेगा का अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि गांव में जिनको रोजगार दिया जा रहा था, जिनको रोजगार, जो रोजगार मांगने वाले लोग हैं और जो रोजगार देने वाले लोग हैं, ये कहीं गायब नहीं हुई। योजना नहीं रही, लेकिन रोजगार चाहने वाले भी वही हैं और रोजगार देना जिनकी जिम्मेदारी है, जो सरकारी अमला है, मैं हूं, आप हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, हम तो वही के वही है ना। तो इसके साथ ये भी बात है कि जैसे ही मनरेगा गई, मनरेगा के जाते ही 1 जुलाई से अर्थात कल से एक नई योजना वो अस्तित्व में आ गई। एक नया कानून बीते वर्ष भारत की संसद ने पारित किया था, उसका नाम था विकसित भारत जी राम जी अधिनियम। उस अधिनियम के तहत कल से ही हमने ग्राम्य भारत में, ग्रामीण भारत में काम मांगने वाले, काम पाने के इच्छुक जरूरतमंद नागरिकों को काम देने का की नई व्यवस्था खड़ी कर, ठीक है। तो विकसित भारत जी राम जी क्या है, हम यूं कह सकते हैं, विकसित भारत जी राम जी मनरेगा की उत्तराधिकारी है, ठीक है ना। उसने वो गई तो राज्याभिषेक किसका करके चली गई, वीबी जी राम जी का करके चली गई। हम लोग कौन है फिर, हम लोग वो लोग हैं जो पहले मनरेगा के माध्यम से होने वाले कार्यों में, उन कार्यों को देने में, उन कार्यों के तहत ठीक से श्रमिकों को काम मिले, ठीक से उस काम का मूल्यांकन हो, उसकी योजना हो, और श्रमिकों को रोजगार देने देते समय हमारा उद्देश्य क्या था, आजीविका, जेब में कुछ धन जाना चाहिए था ना, मूल बात तो यही था ना उनके अस्तित्व के लिए। तो वो समय पर उनको उनका पारिश्रमिक मिल जाए, इस सारी व्यवस्था से जुड़े हुए लोग ही है ना आप लोग। तो मैं ये समझना चाहता हूं आप लोगों से, कुछ चीजें मैं बताऊंगा, कुछ लोग आप लोग बताएंगे कि भाई गांव में काल तय मनरेगा के जाय पाछे के बदल गया। कोई 2-3 लोग बताएंगे, मनरेगा गई, वीबीजी राम जी आई, आज उसका औपचारिक लोकार्पण भी हो गया, भाई क्या बदला है गांव में जरा पता चले। भारत जी, ललित जी, आपके मनों में भी जो सवाल होंगे आप हमारे मित्रों से पूछ सकेंगे, पहले मैं नहीं पूछ रहे, कौन बोलेगा जरा बताएं, हम कैमरा उनकी तरफ घुमा देंगे। गांव में क्या बदल गया भाई, योजना गई, योजना आई, सहज होके बताना है। जी बताए,
5: जी जो मनरेगा योजना थी उसके अंतर्गत ग्रामीणों को, जो काम करने वाले श्रमिक थे, उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, और अब ये जो वीबीजी राम जी है इसमें 125 दिन का रोजगार कर दिया गया।
1: थोड़ा बुलंद आवाज में बोलेंगे तो आवाज आपकी बेहतरीन जाएगी, स्टूडियो वालों आवाज ठीक आ रही है क्या इनकी?
3: जी बिल्कुल
1: जी। एक अंतर यह आया गांव में, यो बदल गया कि भाई पहले साल में 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार था, अब हिंदुस्तान के, हरियाणा के रोजगार के इच्छुक पात्र जो ग्रामीण हैं, उनको हम 100 के बजाय 125 दिन का साल भर में रोजगार देंगे, अर्थात रोजगार के अवसर, रोजगार के घंटे, रोजगार के दिन वो कितने हो गए, 125 हो गए। ठीक है, 125 हो गए। तो हमारे हर चीज को सवाया करने का वो रहता है ना जी। और क्या बदला, और कौन बताएगा जी? माइक्रोफोन लीजिए, अपना परिचय देके बताइए।
6: स्थाई संपत्तियों का निर्माण होगा सरकार, ये जो नहीं हो रहा।
1: जी हाँ भारत जी, पहले क्या होता था, भारत जी सुन पा रहे?
3: जी जी सुन रहा हूँ सर।
7: जी बिल्कुल।
1: पहले क्या होता था, महात्मा गांधी नरेगा में हम काम देते थे, जोर इस बात पे था कि काम दो काम दो, जो काम मांगे काम दो, काम देने पर जोर था। अर्थात ये होता था, मान लो भारत सोपोरी जी या ललित उत्तम जी गांव में से निकल रहे हैं और कहीं कसीला गिरी बाजन, तो क्या कहते थे, मनरेगा में काम चल रहा है, पहली बात तो ये कहते थे। फिर थोड़ी देर पीछे यू इलाजे कहन भाई इनका के काम, बोले गड्ढे खोदते हैं, फिर जब उदचे सारे, फिर इनने मुंदन पर लादे हैं, फिर गड्ढे भरे जाते हैं, क्योंकि काम देने पे जोर है ना, काम देना है जी, तो फिर उसी उन्हीं को खोदने पे लगा देते हैं। अब पता नहीं इस रूप में होता था कि नहीं, कुछ भिन्न हो सकता था, लेकिन कमोबेश स्थिति यही थी बहुत सारी चीजों में। जोर था इस बात पर था कि काम दीजिए, काम अब भी देंगे, मैंने पहले बताया ना, काम अब भी देंगे, काम सवाया देंगे, लेकिन काम इस तरह का देंगे कि गांव के लोगों के विकास से सीधा उस काम का जुड़ा हो। अर्थात अगर पहले गांव से गुजरता हुआ कोई व्यक्ति रोजगार गारंटी योजना के श्रमिकों को काम करते देखकर कहता था काम चल रहा है, तो अब वो ये नहीं कहेगा, उसको ये कहते हुए हमने सुनना चाहते हैं, इतना सुन पाएंगे तो समय बताएगा, अब हम ये सुनना चाहते हैं काम चल रहा है, केवल इतना नहीं है, गांव आगे बढ़ रहा, ये कसी चलेगी, ये श्रम होगा तो गांव में परिसंपत्तियां बनेंगी, एसेट्स बनेंगे, कोई जल अवसंरचना में विस्तार होगा, कोई भंडारण की सुविधा बढ़ेगी, गांव में असल में ऐसे एसेट्स बनेंगे, परिसंपत्तियां बनेंगी जो दिखेंगी। ये बड़ा परिवर्तन है ना, तो एक बड़ा परिवर्तन इधर से कौन बताने वाला है जी, कोई कह दें और क्या परिवर्तन आ रहा है जी, जिनका मन है वो आए और कैमरे को सलीके से सहजता से मुझे लगता है ये घूमने वाला कैमरा है वो पहुंच जाएगा।
8: मैं देख करवा अधिकारी महम से सर, नई स्कीम के अंदर जो लेबर का भुगतान होता था वो अब हफ्ते में कर दिया जाए,
1: पहले कितने में करते थे?
8: 15 दिन था।
1: पहले 15 दिन में भुगतान की व्यवस्था थी और वो भी कभी कभी लटकता लटकता कहां से कहां जाता था, लेकिन नई व्यवस्था में हमने कहा 7 दिन में भुगतान करेंगे, खाते में भुगतान करेंगे, और ये कुछ चीजें बता दी हमने। भारत जी आपके मन में कोई सवाल आया क्या इस चर्चा के बाद? मैं चाहूंगा भारत जी और ललित जी में कोई एक आध सवाल पूछ लें, फिर हम एक दो बिंदु और लेंगे और फिर हम आज के मेहमान सरपंच से बात करेंगे।
3: जी सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं हूँ भारत सोपोरी और FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता जो अंबाला छावनी से प्रसारण करता है। आप सभी इस समय लाइव है और हमारे श्रोता भी आप सभी को सुन रहे हैं। आज है 2 जुलाई 2026 बृहस्पतिवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीय 2083 विक्रम संवत। सर हमने इस विषय पर जब पहले बात की थी तो एक अच्छी बात ये आई थी कि अब ग्राम जो सचिव है, माफ कीजिएगा, जो ग्राम पंचायत है वो ये निर्णय करेगा कि अगले साल में हम अपने गांव के लिए क्या कार्य करना है, उसको वीबी राम जी के अंतर्गत तैयार किया जाएगा और उसी के अंतर्गत उस काम को सफल भी किया जाएगा और उस काम को पूरा भी किया जाएगा। आई थिंक ये इसका सबसे बढ़िया जो एक पॉइंट है वो बहुत अच्छा पॉइंट है कि गांव वालों को और ग्राम पंचायत को पता होगा कि अगर हमने गांव के लिए इस काम को निर्णय करने का किया है तो साल के अंत में, 6 महीने के अंत में या 1.5 साल के अंत में जब तक वो काम पूरा होगा तो कम से कम उस काम को धरातल पर करके दिखाना होगा। यानी कि जवाबदेही सबकी है, पैसे 7 दिन के बाद मिलेंगे ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि 15 दिन समय ज्यादा है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी योजनाएं आगे आती हैं वो लोगों के लिए, ग्रामवासियों के लिए, देशवासियों के लिए सरल हो और उसमें उनका फायदा हो। मुझे लग रहा है कि ये इसका सबसे विशेष जो फायदा है वो ये है कि ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत ही निर्णय करेगा कि हमें कौन सा काम करना है और इस योजना के अंतर्गत हम वो करेंगे। तो ये मेरे मन में बात थी, आप ललित जी आगे बढ़ाएंगे। जी,
1: मैं ललित जी के पास आने से पहले जो भारत जी ने कहा, भारत जी गांव में नहीं रहते, गांव को देखते हैं, गांव की सुनते हैं, गांव कर क्या रहे हो आप लोग, के पत्थर फोड़ो उसको इधर उधर से सुनते हैं, चिड़ियों पे सुनते हैं, कभी कभी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनके सुनते हैं,
3: गांव में जाते भी हैं
1: सर। गांव भारत जी कम जाते हैं, उतना नहीं जाते जितना ये सब रहते हैं।
3: नहीं नहीं जाते हैं, गांव के कार्यक्रम भी रेडियो पे चलते हैं सर। जी,
1: मैंने ये तो कहा ही नहीं, मैं कुछ और कह रहा था। चलिए, खैर, मैं जो कह रहा हूं कि भारत जी ने एक बिंदु पकड़ा कि गांव की पंचायत तय करेगी क्या होना है, इसको और ठीक करिए
3: जी,
1: ये एक्यूरेट नहीं है।
3: जी सर,
1: जो परिवर्तन है उस परिवर्तन में और स्पष्टता लाइए। कौन लाएगा जो नहीं बोले, कोई ऐसे मित्र बोले। हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए रुकिए, आने दीजिए, कैमरे को अपने पास आने दीजिए। भारत जी, जो आपने बात कही उसमें एक चीज जोड़ेंगे हमारे मित्र
3: जी।
8: सर, इसमें सरपंच तय, ग्राम सचिव तय नहीं करे, ग्राम सभा तय करेगी।
1: हाँ,
8: जो ग्राम का लोग हैं वो तय करेंगे कि हमें क्या काम अपने गांव में करवाने।
3: जी जी,
2: और एक बिंदु और रह गया सर।
1: हाँ बताइए।
2: 300 रुपए न्यूनतम मजदूरी मिलेगी, पहले क्या था, हरेक स्टेट में अलग थी, किसी में 250 थी, किसी में कुछ थी, अब प्रेस रिलीज आया, मतलब 300 तो न्यूनतम मिलेगी।
1: इसमें इसको थोड़ा सा मैं और ठीक कर देता हूँ, न्यूनतम तो तय हो गई लेकिन ऊपर की कोई लिमिट नहीं है,
2: ऊपर की नहीं है।
1: मतलब हरियाणा में 400 मिल रहे थे,
8: 400 हो गए।
1: हाँ, मैं वही बताने वाला था, 400 कब तक थे, 30 तक या मार्च में बदल गया, 30 जून तक, मनरेगा तक, मतलब मनरेगा जाते जाते 400 रुपए की दैनिक मजदूरी के साथ गई है, लेकिन नई व्यवस्था में 9 रुपए बढ़ गए ना, तो 409 रुपए हम दिहाड़ी देने वाले हैं श्रमिकों को, और मेरे ख्याल से देश में ये सबसे ज्यादा है, अब भी ज्यादा ही है। दूसरी बात ये कि ग्राम सभा तय करेगी, ये तो फैसला हो गया, गांव की जैसे GPDP बनाते हैं, ग्राम विकास योजना बनाते हैं, ऐसे ही VBG राम जी के लिए भी साल भर की योजना बने, ठीक है ना, और उसमें तय हो जाएगा भाई ये एसेट सृजित किए जाएंगे, इन इन ये काम गांव में होने वाले हैं, उन कामों के आधार पर उन कामों का नियोजन हम करेंगे, वो काम करवा के श्रमिकों को हम काम देंगे। कौन कौन से काम हो सकते हैं VBG राम जी में, कौन कौन से काम गांव में हो सकते हैं, इस पर कोई साथी बताए, उसकी संख्या पता होनी चाहिए, कितने हैं सूची में,
8: चार टाइप के आगे
1: देखने, चार तो एक ब्रॉड कैटेगरीज हैं,
8: 318
1: होंगे, कितने, 318 तरह के अलग अलग गांव में काम वो सरकार ने सूचीबद्ध कर दिए, वो काम विकसित भारत जीराम जी में जो श्रमिक काम पाएंगे उनसे लिए जा सकते हैं, करवाए जा सकते हैं, और एक बात केंद्र की सरकार ने स्पष्ट की, अभी विकसित भारत या ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में जब हम 2 दिन के मंथन में थे तो केंद्र की सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि ये अंतिम सूची नहीं है, ये कुरान शरीफ नहीं है जिसमें संशोधन नहीं हो सकता, ये सूची निरंतर अपडेट अपग्रेड होती रहेगी, अभी तो योजना आई है, जैसी आवश्यकताएं होंगी, जैसी राज्यों की सिफारिशें होंगी, केंद्र उनमें छूट देता रहेगा। चलते चलते हम आज के कार्यक्रम राम राम हरियाणा का आधा हिस्सा आज के मेहमान सरपंच के लिए छोड़ेंगे, चलते चलते मैं केवल 2 जो शब्द रह गए उन पर, ये सब मेरे मित्रों की जानकारी के लिए, मगर ललित जी आपका कोई सवाल अगर इस बीच में छलांगे मार रहा हो तो वो पूछ लीजिए, फिर हमें 2 शब्दों पर चर्चा के बाद आगे बढ़ेंगे। जी ललित जी,
7: सवाल है,
1: आप आईटी के आदमी हो, खुद होगे कुछ ना कुछ उल्टे बिंडे थे।
7: जी सर, 2-3 सवाल है मेरे, पहला तो यही है कि क्योंकि मैं खुद आईटी से जुड़ा हुआ हूं, तो आईटी से रिलेटेड भी क्या कुछ जो है प्रोग्राम के अंदर कुछ रखा गया है कि गांव की आईटी या इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशन रिलेटेड चीजों पे थोड़ी सी तरक्की हो, क्या इसके लिए भी कुछ प्रोग्राम्स हैं? दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि जो डिमांड है, मतलब कोई किसी चीज की जो डिमांड है ग्राम सभा की, वो एक्सीड करती है एलोकेटेड बजटों का, जो जितना एलोकेट हुआ है बजट, तो उस केस में क्या होगा? क्योंकि कुछ दिनों से हम जब कुछ सरपंच जो आए थे मेहमान हमारे, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि कहीं गांव में जमीन नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है, तो जमीन की किल्लत की वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। तो क्या इस तरह की चीजों को भी टैकल करने के लिए कुछ है इसके अंदर?
1: जी, आप लोगों में से कोई ललित जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गांव में नहीं रहते, फिर भी ये भारत जी की तरह ये नहीं कहेंगे मैं तो गोगड़ी पर पड़े रहूं, भाई साहब सेठ नहीं रहते हो आप, कभी कभी आते हो, हमारे काबू ही नहीं आते। तो इन्होंने जो प्रश्न किया, योजना पर नजर डालने के बाद कोई बताएगा क्या इनके किसी समस्या का समाधान है? कैसी योजना?
9: टेक्नोलॉजी तो ये बायोमेट्रिक होगी अटेंडर।
1: जी, एक बात कमलदीप जी की सुनते हैं, ये क्या कह रहे हैं। ललित जी, वैसे आपका सवाल कुछ और था, मेरे मित्र ने अभी समझ नहीं पाए, ये अपनी बात कह देंगे। आप तो दरअसल उसमें ये ढूंढ रहे थे कि भाई टेक्नोलॉजी, गांव के लोगों को टेक्नोलॉजी मिले, उनके जीवन का हिस्सा नई टेक्नोलॉजी आईटी, या आईटी की जो सगी बहन है, छोटी बहन एआई, वो उनके जीवन में कैसे आए, क्या इसका कोई प्रोविजन है? सांगवान जी की टिप्पणी सुन लेते हैं। जी
2: तो ललित जी, क्योंकि मैं भी भू सूचना तंत्र से हूँ, आपको थोड़ा इंग्लिश में बता।
1: शुरू में सुन के ललित जी, आपका आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी खतरनाक है। भू सूचना तंत्र से सुन के एक तंत्र से तांत्रिक सा लग गया होगा, और भू से भूत दिखाई देने लग गए होंगे, ऐसा नहीं है, बड़ी पवित्र सी बात है जी।
2: तो ये जीआईएस टेक्नोलॉजी है जी, तो आपको पता होगा बाहर भी बहुत यूज हो रही है जीआईएस, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या है, जैसे आपने बताया, तो प्रायोरिटी डिफाइन होगी, क्योंकि संसाधन रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, किसी की भी बात करें, हम किसी भी लेवल की बात करें, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे है या फिर गांव के स्तर पे, रिसोर्सेज लिमिटेड है, जमीन वही है, लेकिन उसका क्या बेस्ट,

0: फ्रीज हो गए हैं, शायद इंटरनेट का इश्यू है। हाँ
1: आवाज नहीं आ रही यहां भी।
2: बारची, कुछ लग रहा है वहां पे इंटरनेट की समस्या आ गई
1: आवाज
2: है।
1: आवाज नहीं आ रही जी।
3: कौन कौन ऐसा है जिसको जो ये कह सकता है कि मैं तो साहब समझता हूँ ट्रेनिंग ट्रूनिंग तो हम ही दे देंगे, ऐसा है कोई? लेकिन हमारे लिए युक्तधारा नया नहीं होना चाहिए, पहले भी इस्तेमाल हो रहा था। कुल मिला के सरकार का आग्रह इस बात पर है, जोर इस बात पर है कि गांव की प्लानिंग, नियोजन जिसको कहते हैं, गांव के नक्शा आज के 5 साल बाद 10 साल बाद कैसा होगा, 2047 में हम विकसित भारत चाहते हैं तो विकसित गांव चाहिए, विकसित गांव कैसा होगा, उसके लिए क्या क्या काम करने हैं, उन कामों का नियोजन वो एवी नहीं होगा, प्रौद्योगिकी का, तकनीक का इस्तेमाल करके होगा, साइंटिफिकली होगा। मुंह उठा के जड़े जी कर जोड़ खोद दिया और जी कर कर दिया, जहां जी कर चेक डैम बना दिया, ऐसा नहीं होगा। मैंने अभी पिछले कार्यक्रम में बताया था, एक गांव में हम अभी गए, वहां से लाइव भी किया था बल्कि पिछले हफ्ते, तो उन्होंने बताया जी वो कचरा शेड बनाया, और कचरा शेड जो बनाया बिल्कुल एक गांव के बड़े तालाब के किनारे पे बना दिया, उसकी ऊंचाई गहराई पानी के बहाव की स्थिति रास्ते की व्यवस्था, इस पर कतई किसी ने कायदे से वैज्ञानिक तरीके से चिंतन मनन नहीं करा, नतीजा पैसा लग गया, कथित रूप से कचरा शेड बन गया, लेकिन कचरा शेड कचरा कचरे के निस्तारण के काम नहीं, खुद कचरा बन गया। कारण जरा सी बरसात आई तालाब ओवरफ्लो, सारा पानी फू कचरा शेड। तो ऐसी गलतियां भविष्य में न हो, उस पर उसके लिए इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का उपयोग बढ़ाने का तय हुआ है। मैं इस अनुरोध के साथ राम राम हरियाणा के आज के अंक से अपने इन सब मित्रों के साथ जो यहाँ प्रशिक्षण के लिए आए हैं, भारत जी अनुमति लूंगा कि आज से विधिवत विकसित भारत जी राम जी का लोकार्पण हो गया, तिरुपति आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ी सभा हुई, वहां पर भारत के ग्रामीण विकास और कृषि कल्याण कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पहुंचे हुए थे, वहां के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हमारे केंद्र के 2 मंत्री और ये सब वहां थे, वहां से ये कार्यक्रम औपचारिक रूप से इसका श्रीगणेश हो गया। हरियाणा का हमारा राज्य स्तरीय जो उद्घाटन समारोह है वीपी जी राम जी का, वो कुरुक्षेत्र में हुआ, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के सभागार में, हमारे मंत्री श्री कृष्णलाल पवार जी उस कार्यक्रम में थे, और शिवराज जी ने देशभर में कुछ श्रमिकों से भी बात की, उनके शंकाओं का भी समाधान किया, योजना अस्तित्व में आ गई। चुनौती ये है मेरे और आपके सामने, चुनौती ये है सरकार और सरकारी अमले के सामने कि जिस मकसद और जिस भाव से ये योजना आई है, इसको सिरे चढ़ाने के लिए हमको आगे आना है, कोई और कहीं से आके इसको कामयाब कर

0: इसमें जोड़नी है तो करीब करीब कितना हो जाएगा, 1.5 लाख करोड़ रुपए अगले 9 महीने में गांव में जाएगा श्रमिकों के खाते में। इसमें से एक बड़ी हिस्सा, बड़ा हिस्सा मजदूरी के रूप में जाएगा। तो एक साल में यानी इस वित्तीय वर्ष में बचे हुए 9 महीने में 1.5 लाख करोड़ भारत के गांवों में जाने वाला है। अगले 5 वर्षों में, टोटल 5 वर्षों का अगर हम अनुमान लगाएं तो करीब करीब 7 लाख करोड़ रुपए वो जाएंगे साहब। ये पैसा परिसंपत्तियों के रूप में दिखेगा, दिखना चाहिए। प्रभावी ढंग से अगर हमने योजनाओं, इस योजना को लागू कर दिया ना, तो गांव की तस्वीर बदल जाएगी। 5 सालों में एवरेज छोटे बड़े गांव को मान लो एक जैसे पैसे भी मिले तो एक गांव को कितने मिलेंगे, करीब करीब 2 करोड़ के लगभग होगा एवरेज। अगर मान लो कि सारे गांव एक आकार के हों तो औसत 5 वर्षों में एक गांव के खाते में 2 करोड़ रुपए आएंगे। वो 2 करोड़ रुपए अगर सदुपयोग हो जाए और सदुपयोग करवाने वाले लोग मजबूती के साथ धरातल पर काम करते हुए नजर आए तो ग्राम विकसित होंगे, गांव विकसित होंगे, तो 2047 का रास्ता आसान हो जाएगा। आइए इस रास्ते को आसान करते हैं। इस दौर के जिम्मेदार लोग कौन है, कौन है? फिर के बताओ ना, इस दौर के जिम्मेदार लोग हम हैं। इतिहास के पन्नों की तरफ जब भविष्य के लोग देखेंगे तो अपने ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, लांछन नहीं आना चाहिए। वो कौन सा गाना है, देखो वीर जवानों माँ के दूध पे ये इल्जाम ना आए, कुछ उस भाव के साथ कि कल को हम पर ये सवाल ना आए कि ये सेवा करनी है धरनी है, क्यों बट्टा क्यों बिठवा अच्छा करेंगे, हम बेहतर करेंगे। हम भट्टे चलाएंगे, भट्टा बिठाएंगे नहीं, भट्टे चलेंगे तो विनिर्माण होगा,
1: स्वर्ण अक्षरों में नाम होगा।
0: 3 दिन मजबूती से बेहतरीन ढंग से काम करिए, खूब सीख कर जाइए, सीख कर जाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं, करेंगे जाने के बाद हम फील्ड में देखने आएंगे। कहीं ना कहीं सोलंकी साहब आए ना आए, मैं तो आ सकता हूँ, मेरी पहुंच से तो आप लोग बाहर नहीं हो, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ये भी आ जाएंगे छापामारी करने। 3 दिन हिंदी अपनी राजभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी मातृभाषा के प्रति इतना आग्रह रखना कि यहां के जाने के बाद भी हिंदी मन मस्तिष्क रक्त पर शिराओं में और सांसों में बसी रहे, ताकि जब मैं गांव में आऊं तो फिर परिचय को ये ना कराए कि माइसेल्फ नत्था सिंह जूनियर इंजीनियर, ठीक है ना। नत्था सिंह कनिष्ठ अभियंता होना चाहिए, आपके दफ्तर के बाहर अगर कहीं नाम पट्टी का लगी है तो यहां से जाने के बाद उसका हिंदीकरण हो जाना चाहिए। इस अनुरोध के साथ यहां से विराम लूंगा। अगर स्टूडियो वालों को, प्रीतम जी, ललित जी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं हम यहां से फिर एकदम क्या करेंगे, यहां से हम रवाना हो जाएंगे। जी प्रीतम जी, कुछ सवाल है?
2: नहीं जी, कुछ सवाल नहीं है सर। सर सवाल है सरपंच साहब से, क्योंकि जहाँ काफी सरपंच साहब के गांव से काफी सवाल आए थे, एक फिरनी का मसला था उसके ऊपर सरपंच साहब से सवाल।
0: ये एक सवाल मेरे मन में है, उसको मैं कर लेता हूँ भाई। ये सरपंच साहब का परिचय कराइए जल्दी से। गोविंदर सिंह जी,
3: हरियाणा के आज के प्रसारण में जुड़े सभी श्रोता है और हमारे पैनल में जुड़े सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूँ आज के प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। सर आज हमारे साथ जो पंचायत जुड़ी है ना, इसके गांव के श्रोता बार बार हमें प्रोग्राम में बोल रहे थे उनकी समस्या थी फिरने की, वो डुडी बड़ा नंदकरण जो गाँव है चरखी दादरी जिले का, तो मैंने वीडियो साहब से बेनती की थी इसमें जुड़ने के लिए, लेकिन उनके पास 2-3 ब्लॉकों का चार्ज है, उन्होंने माफी चाहिए। और वहाँ के सरपंच जो जीत शर्मा जी हैं और अमित कुमार जो ग्राम सचिव है उनकी ड्यूटी लगाई है ताकि वो स्थिति को स्पष्ट कर सकेंगे क्या मसला है वहाँ पे। और दूसरे

0: हमारे साथ एक मेहमान से पहुंचे हैं श्री गुरप्रीत सिंह जी। ये माजरी से हैं, अंबाला वन जो उनका ब्लॉक है जिला अंबाला से, जो पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेकिन ये लिंक से कुछ और जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं इन दोनों मेहमानों का और ग्राम
1: ये
0: सचिव का
1: फिरनी वाले विषय को आप लोग जारी रखिएगा, हम यहाँ युक्त धारा पर लौट जाते हैं। लेकिन शब्दों का एक फिर है, किसी के लिए फिरनी समस्या है, किसी के लिए फिरनी स्वाद है। मौसम आ रहा है, सावन आने लग रहा है, तो घेवर और फिरनी का समय आ रहा है। हमारे यहाँ कुंडली की फिरनी बड़ी विख्यात और भी कई जगह की होगी। तो भाई आड़े तो हमारी फिरनी तो मीठी रहने दो, और ये जो फिरनी डूडी नंदकरण की है, इसका सरपंच साहब कर लो निपटारा। मारता बता दियो कित लट चलाने हैं, हम तैयार बैठे हैं। बहुत धन्यवाद। मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि एक बार हमें जरा
2: सरपंच साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सरपंच साहब जी, आपके गांव से बहुत ही शिकायतें आई हैं। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं आपके पास उसी फिरनी का, जिस फिरनी के ऊपर बात हुई थी, आपने लगभग 15-20 दिन पहले बताया था कि उसकी कुछ प्रोग्रेस है, उसकी प्रोग्रेस कितनी है उसके बारे में बता दीजिए। बस
3: हमने जी उसके लिए वो लगाया था, पैमाइश के लिए एप्लीकेशन लगाई थी।
2: अच्छा।
3: लेकिन उसमें पहले किस्त लगी है सर, उसमें कोई समस्या है चकबंदी के टाइम की, चकबंदी के टाइम में कोई गलत अक्षर लिखे हुए हैं, वो पैमाइश नहीं हो पा रही है सर।
1: कोई तो जादू टोना होगा।
3: जादू टोना किसने सलाह दी है कि भाई 42 में इसका केस किया जाए।
4: सर एक कॉल आ रहा है, कॉल सुन लीजिए। थे
2: हेलो
5: हेलो
3: हेलो
5: जी।
4: नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी।
4: जी
5: हाँ जी, मैं अंबाला कैंट से बोल रही हूँ सर
4: जी।
5: एक तो मेरी ये शिकायत है सर कि यहाँ पर कोई भी मंत्री जो भी किसी डिपार्टमेंट में बैठा है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का कोई ऑफिसर है या कोई है, फोन ही नहीं उठाते। चाहे वो एमसी है, चाहे कोई डीसी है, फोन करो फोन ही नहीं उठाते। पहली शिकायत तो मेरी ये है।
4: आपका नाम क्या है? नाम कृपया नाम बताएं अपना।
5: मेरा नाम उषा चंदेला जी।
4: जी जी उषा जी बताइए जी। दूसरा
5: श्यामनगर।
4: जी जी
5: ठीक है सर
4: जी।
5: जैसे आज सुबह से लाइट तो मैंने फोन करा है, जो महेश सब डिविजन फोन ही नहीं उठाते, बिजी कर देंगे। कभी रात को लाइट चले गए सर, फोन ही नहीं उठाते। ऐसे ही दफ्तर में किसी में, जैसे निगम में भी फोन करो, निगम वाले फोन नहीं उठाते। सर ये क्या तरीका है? पेशेंट मैं सर 67 इयर्स की हूँ, मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो कम से कम फोन तो पिक करे ना सर। फोन ही नहीं पिक करते, कोई भी हो, कोई डिपार्टमेंट ले लो, यहाँ का इतना बुरा हाल है। नालियां इतनी गंदी पड़ी, तो अगर कहो कि भैया वो फोन ही नहीं उठाएंगे, बंद ही कर देंगे है, और कूड़ा निकाल के बाहर रख जाते हैं। 10-10 दिन वो कूड़ा सड़ा रहता है, कोई मतलब ही नहीं बनता इस तरीके से। तो सर मुश्किल हो जाएगा, मच्छर इतने हैं। अब सुबह से लाइट गई हुई है, हार्ट पेशेंट हूँ मैं, और परेशान हो रही हूँ कि लाइट कब आएगी, कि 7 बजे आएगी। वो भी मैंने पंचकूला वाले सब डिविजन में फोन करा है
4: जी,
5: तब जाके उन्होंने सब पिक कर लिया फोन।
4: उषा जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो एमसी है उनका नाम क्या है?
5: हमारा एमसी है जी अत्री जी है।
4: अच्छा, जो लक्की लक्की बीकानेर वाले है ना?
5: हाँ जी, लक्की बीकानेर वाले हैं सर
4: जी।
5: वो काम तो बहुत करवा रहा लड़का, पर जो आगे, अब वो तो हर समय नहीं होता हाजिर
4: जी,
5: तो अब बाकी जो डिपार्टमेंट है उनको तो उठाना चाहिए ना सर।
4: नहीं ठीक है, फोन तो उठाना है, क्योंकि फोन इसीलिए रखा गया है और विभाग भी इसीलिए बनाए गए हैं ताकि वो एक आम व्यक्ति की बात सुन लें। मैंने अभी आपको आपकी जानकारी के लिए एक मैं बात बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले हमारे एरिया में, क्योंकि आपका और हमारा एरिया पास पास लगता है, पूरे 11 घंटे की जो जो बिजली है वो ऑफ कर दी गई बिना किसी सूचना के। हमारे आसपास भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, जिनके पास 11 घंटे तक उनका इन्वर्टर भी ऑफ हो गया, तब भी कोई बिना किसी सूचना के उन्होंने तारें बदलने का काम शुरू किया और 11 घंटे तक लाइट नहीं आई, हमारा जो प्रसारण है वो भी कुछ घंटे के लिए बाधित हुआ। तो ये समस्या हर जगह पर है, इस समस्या के लिए हम जो कंसर्न्ड व्यक्ति होंगे आने वाले शो में हम कोशिश करेंगे कि उनको हम यहाँ पर बुलाएं।
5: ठीक है सर, हम बिजली बात का इस महकमे का बहुत बुरा है, वहाँ हमारे घर बन रहा है, मेरे देवर का घर है सर, दो ट्रांसफार्मर एक जगह लगा दिए हैं, अब हमारा वहाँ काम करना मुश्किल हो रहा है, करंट लगता है बच्चों को जो काम करने आते हैं। हमने रिक्वेस्ट करी कि यहाँ से हटा दो, तुमने दो क्यों लगा दिए, पहले एक था दूसरा भी वही रख गए, कोई सुनवाई नहीं है सर
4: है? जी आपका हमने नोट कर दिया। अभी वीरेंद्र जी हमारे साथ यहाँ पे नहीं है, वीरेंद्र जी तक हम ये बात पहुंचाए, मैं अंबाला से ही बोल रहा हूँ, मैंने आपकी जो डिटेल है वो नोट करा दी है, हम वीरेंद्र सर तक ये बात पहुंचाएंगे, आने वाले जो हमारी शोज है उनमें हम बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे लक्की जी को भी हम इसके साथ जोड़ें और उनसे भी ये बात करें, अगर वो हमारे प्रतिनिधि है तो उनको उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो हमारी बात विभागों तक पहुंचाएं ताकि हमारी समस्या का समाधान हो।
5: सर उनसे हमें कोई शिकायत, क्योंकि वो बहुत काम करवा रहा है, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो काम नहीं करवा रहा, बट बाकी डिपार्टमेंट वाले सारे ऐसे ही है कि कोई फोन ही नहीं पिक करता।
4: पर उषा जी, पर उषा जी एमसी जो है वही आपके और विभाग के बीच की कड़ी है, अगर आपको उनसे कोई शिकायत नहीं है तो आप उनसे पूछिए ना कि वो विभाग क्यों नहीं काम करते, हम भी पूछेंगे, हम उनको भी जी जी जी
2: भारत जी
4: जी प्रीतम जी आप आगे बढ़ाइए जब तक मैं वापस आता हूँ। जी जी जी उषा जी का फोन, उषा जी का फोन डिस्कनेक्ट अब हुआ है, उनकी जानकारी हमने नोट कर दी है, वीरेंद्र सर के साथ डिस्कस करेंगे और जो हमारे यहाँ पास में एक एरिया है जो वहाँ के एमसी है, कोशिश करेंगे अगले कुछ दिनों के बाद उनको भी इसमें जोड़ें, ये समस्या जरूर है और अगर एक व्यक्ति की कॉल या बात ना सुनी जाए तो उनका ये जो नाराजगी है वो जायज है। तो कृपया आप इस कार्यक्रम को आगे चलाएं और सरपंच जी से बात करें और इस विषय में हम अगले शोज में भी बात करेंगे वीरेंद्र सर के बात करने के बाद। जी
3: हाँ सर,
2: सरपंच साहब। हाँ बताइए सरपंच साहब
3: जी, उनने तो ये बताया था कि तो अपने ये गिरदावर साहब है, उनने ये बताया कि ये 42 में केस डालो, सारा ये 42 है, इसमें केस डालो उससे समाधान निकलेगा। ये
2: फिर आपने क्या किया, वो केस डाल दिया या अभी से आप?
3: सर अभी एक दो दिन में गांव के ग्राम सभा करके उससे बातचीत करके करेंगे सर,
4: जो जो उनके अड़ोस पड़ोस है उसके तो है तो उनका कान पकड़ के साथ ले जाओ
2: गांव ले चलो उनके साथ, सहमति होने के बाद ही होगा ये तो,
4: उससे तो
2: लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जो वो कह रहा है कि 5 फुट का रास्ता है पानी निकलने का नहीं जा रहा, अब जो मौसम है बारिश का मौसम आ रहा है, तो इसका कोई आपके पास अल्टरनेटिव समाधान है, वहाँ से रास्ता हो जाए
3: वहाँ से? तो जी एक बात तो वो सिंचाई में पड़ता है, उसका कोई समाधान नहीं,
4: तो आने दो
3: उसको, तो जिस तरह जो खेत में जा रहे हैं वो तो एक अलग बात है, खेत में जिसके हम जा का खेत लगता है वो जाने दे ना जाने दे, उसके बारे में तो क्या कर सकते हैं सर?
4: चलो क्योंकि
3: और कोई आपके
4: पहले तो उसी को जोड़ना चाहिए।
3: हाँ सर,
2: आप जो बता रहे हो उसमें मिट्टी डाल के ऊंचा करके ऐसा तो हो सकता है वो पानी आगे जा जाके कहीं आप जोड़ तक ले जा सकते हो उसको,
3: जोड़ तक ले जाने खातर तो जी जिस तरह की अपने जमीन बाड़ू है और टिब्बा के बीच में पड़ा है गाँव, तो ऊपर से पानी का कटा होके वो एक सार हो जाता है और पानी तो निचाण की साइड ही जाएगा सर
4: जी।
2: फिर तो सरपंच साहब मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है, आप कह रहे हो कि टिब्बो का गांव है, थोड़ा सा रेत गिरवा के ऐसा हो जाए कि कहीं पे भी पानी ना भरे, ठीक है, और उसका निकासी कहीं पे भी जो रास्ता निकलता है वहां उसका निकासी करवा दो, तब तक जब तक इसकी निपाई और ये रास्ता बनता है।
3: सर इसमें जो है ये 5-7 घर लगते, किसकी शिकायत है ये बताओ, वहां से तो करें हम, शिकायतकर्ता का कोई नाम हो?
2: शिकायत काफी थी, विजेंद्र जी हैं, महेश जी हैं, दो चार और लोग थे जिन्होंने काफी शिकायतें आती हैं कि उनकी निपाई नहीं हो रही।
3: ये राजेंद्र और महेश सर का तो जो फिरनी के साथ साथ पूरा वो लगता है, इनका खेत है जो फिरनी की एक साइड तो गांव के प्लाट की और वो है, और एक साइड की पूरी इनकी है 4 किलो की लंबाई की। और इन्हीं की खेतों में गलत बताया लिखा है उन्होंने कि भाई इनका किला नंबर है, ये गलत है, इसमें प्लाट कट गया है, ये है वो रिपोर्ट है मेरे पास गिरदावर साहब की।
2: आपके हिसाब से जो फिरनी का रास्ता है वो कितने 33 फुट का है या कितने फुट का है?
3: 27 फुट का है सर, ये
2: 27 फुट का।
3: हाँ सर।
2: अब वहाँ रियल में चौड़ाई है, वास्तव में जो चौड़ाई है उस रास्ते की कितने फुट है?
3: जो सीताराम नंबरदार के घर के पास है सर, वहाँ तो ये 5 नहीं तो 8-9 के करीब होगी, 10 के करीब होगा, वैसे इतना ही बचा हुआ है। वहाँ पर खड्डा भी
2: वहाँ से नहीं, गाड़ी निकल जाती है वहाँ से?
3: नहीं निकलती सर, वहाँ पर 8 सीवरी है वैसे की वो एक साइड तो उनका टिब्बा सा और डोड़ा सा बना रखा है।
2: सरपंच साहब, आप जैसे ग्राम सभा कर रहे हो, आपके गांव के पूरे गांव की ग्राम सभा होगी, लोग बैठेंगे, मौजूद आदमी बैठेंगे, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल सकता कि आप उनको सहमत करके और वहां जो रास्ता है इतना तो रास्ता हो जाए कि गाड़ी निकल जाए, पैदल आदमी निकल जाए, पानी भरने का जो पानी भरा है उसका कुछ समाधान हो जाए?
3: इसी बात के लिए
2: भी ये तो सब कुछ हो सकता है।
3: हाँ, गाँव कर सकता है, गाँव की चीज है, गाँव को करना चाहिए। केस का तो पता नहीं जी कितने, इसलिए रोक रखा है कि एक बार ग्राम सभा करेंगे, बड़े बुजुर्गों से पूछ के इनका समाधान ढूंढेंगे और केस तो बहुत लंबा चल जाएगा।
0: सरपंच साहब, जो मेरे सुनने में आया है जिसमें कोई मार्केटिंग बोर्ड का भी मसला है ना?
3: नहीं जी, मार्केटिंग बोर्ड का तो पता नहीं क्या है जी,
0: मेरा जो सुनने में आया है, जहाँ बात हुआ मेरा, वो बोल रहे थे कि जो फिरनी है ये मार्केटिंग बोर्ड के अंडर आती है, तो पंचायत डिपार्टमेंट सिर्फ उसको सपोर्ट दे सकता है, जो मसला ये मार्केटिंग बोर्ड है वो हल करेगा इसको, ऐसा भी है कोई?
3: नहीं, ऐसे तो कोई नहीं है जी मेरे पास तो।
0: वो बोल रहे थे कि मार्केटिंग बोर्ड से NOC लेना पड़ेगा, फिर आगे जो बढ़ेगा, मतलब कई लोगों ने केस लगा रखा ना, जैसे कोर्ट में केस है तो वह बहुत लंबा चलेगा मसला फिर।
3: हाँ सर, हाँ जी।
0: कितने लोगों ने आपके उससे लगा रखा है अभी जो केस है? जो
3: इस पर तो जी शिकायत तो ये आपके पास है, राजेंद्र महेश ने लगाई होगी, और तो इसके ऊपर इतनी ज्यादा कौन है, 1-2 CM विंडो तो लगी थी रास्ते के लिए, क्योंकि हमने खेत में जाने के लिए रास्ता तय
0: किया। एक बार तो इसकी पुमाइश करवा चुके हैं ना,
3: एक बार करवा लीजिए उस।
0: दोबारा से फिर शुरू की है
3: जी, दोबारा लगाई थी जी, इसमें उसी गिरदावर से बात हुई थी, उसने कहा कि भई ये मैं पैमाइश नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ये लिख दिया कि ये गलत है, तो मैं पैमाइश कैसे करूं?
0: नहीं, आप इस मसले के लिए DC साहब से पहुंच कीजिए ना, DC साहब से मिलिए, इसको जल्दी इस मसले को हल करवाने के लिए, क्यों हमारे प्रोग्राम में बार बार वो फोन आ रहे हैं।
3: तो इसका जिस आप ये
2: एक कॉल सुन,
3: हाँ सर,
2: सरपंच साहब एक फोन आया,
3: सुन लो जी। ओके सर।
2: हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे जी?
6: मैं राजेंद्र शर्मा जंक्शन से।
2: कौन बोल रहे जी?
6: राजेंद्र शर्मा लुड्डीवाला नंदगढ़ से।
2: हाँ राजेंद्र जी बोलिए।
6: हाँ जी, ये सरपंच साहब बोल रहे थे अभी, भाई फिरनी एक साइड में, फिरनी प्लाट वाले के प्लाट पूरे हैं, खेत वाले का खेत पूरा है, और फिरनी भी पूरी है।
2: अच्छा,
6: एक ही प्लाट है, अगर पैमाइश करे तो एक प्लाट है वहाँ, तो सिर्फ एक मालूम में 4 टुकड़े हैं, और दूसरी साइड में द्वारा किसी लगती है,
2: विजेंद्र जी, अगर खेत भी पूरे हैं और प्लाट भी पूरा है तो फिर वो फिरनी क्या, फिरनी कम है?
6: नहीं, वो फिरनी कम है, फिरनी कम नहीं है, वो प्लाट दो थे, वो अगली साइड पीछे की जमीन छोड़ दी उन्होंने,
2: अच्छा
6: एक ही प्लाट है, ये भी नहीं भाई 50 बीघा मिनके लेना पड़ेगा, लंबा प्लाट है, एक प्लाट सिंगल प्लाट है एक।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सब

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: यू आर लिसनिंग FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 13। आज का कार्यक्रम आधारित है गीतकार साहिर लुधियानवी पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपुरी ने। निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरनी।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरे पल। आज का सफर उर्दू के उस अजीम शायर के नाम जिसने अपनी कलम से हर तलखी को नज़म बना दिया, जिसने कहा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जी हाँ, आज हम साहिर लुधियानवी के पहलू टटोलेंगे और उनके बेहतरीन गीतों के साथ इस सफर को यादगार बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। साहिर का असली नाम था अब्दुल हई। 8 मार्च 1921 को लुधियाना पंजाब में उनका जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ, लेकिन उनकी किस्मत में बचपन से ही कड़वाहट लिखी थी। जमींदार पिता और मां सरदार बेगम के बीच के तनाव ने उनके शुरुआती सालों को खौफ और आर्थिक तंगी में गुजारा। पिता ने मां पर मुकदमे किए, साहिर की जान को खतरा हुआ और इस भयानक माहौल ने साहिर के भीतर एक विद्रोही शायर को जन्म दिया। उन्होंने लुधियाना के सरकारी कॉलेज में पढ़ाई की, जहां उनकी नज़में बेहद मशहूर हुई, लेकिन एक सहपाठी लड़की से प्रेम संबंध के चलते उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। ये निष्कासन उन्हें और उनकी मां को पहले लाहौर और फिर 1949 में बॉम्बे ले आया। उनका पहला कविता संग्रह तलखियां 1945 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें निजी दर्द और समाज के प्रति तीखी आलोचना थी। बॉम्बे आकर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया। वो सिर्फ लोकप्रिय गाने लिखने को तैयार नहीं थे, वो चाहते थे कि उनके गानों में शायरी का एक गहरा एहसास हो। फिर उनकी मुलाकात हुई एसडी बर्मन से, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना। बर्मन साहब ने एक धुन दी और साहिर ने उस धुन पर लिखा वो अमर गीत, जिसने उन्हें एक फिल्म गीतकार के तौर पर स्थापित कर दिया। पेश है साहिर की कलम से निकला फिल्मी दुनिया में पहचान दिलाने वाला पहला कदम।

0: ठंडी हवाएं एक ऐसी सादगी जो दिल को छू जाती है। इस गीत की सफलता के बाद साहिर और एसडी वर्मन की जोड़ी ने बाजी, जाल और टैक्सी ड्राइवर जैसी कई हिट फिल्में दी, लेकिन साहिर का असली इनकलाबी पहलू अभी सामने आना बाकी था, जिस पर हम अब रोशनी डालेंगे। साहिर लुधियानवी को हिंदी सिनेमा का इनकलाबी शायर कहा जाता है। वो पहले गीतकार थे जिन्होंने अपने गीतों के लिए पारिश्रमिक तय करने पर जोर दिया और फिल्म के पोस्टर पर गीतकार को संगीतकार के बराबर जगह दिलवाई। वो सिर्फ प्रेम गीत नहीं लिखना चाहते थे, उनका मानना था कि एक कलाकार को समाज की बुराइयों को उजागर करना चाहिए। 1957 में फिल्म प्यासा आई, जिसमें साहिर ने गुरुदत्त के लिए अपनी सारी कड़वाहट, अपना सारा विद्रोह उड़ेल दिया। उन्होंने गरीबी, बेबसी और इंसानियत के गिरते मूल्यों पर वो सवाल उठाए जो आज भी गूंजते हैं। उनका ये गीत एक शायर की पीड़ा थी, जब उसने देखा कि उसकी कला और कविता को महज मनोरंजन का जरिया बना दिया गया है। पेश है फिल्म प्यासा से वो नज़्म जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कदावर नेताओं को भी भावुक कर दिया था।
1: जाने वो कैसे

जाने वो कैसे लोग थे, आज भी हर संवेदनशील दिल इस गीत से जुड़ाव महसूस करता है। इस गहन सामाजिक दृष्टिकोण के बावजूद साहिर की रोमानियत भी बेमिसाल थी। उन्होंने प्यार को सिर्फ फूल और चांद तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जिंदगी के उतार चढ़ाव में एक सच्चा साथी माना। फिल्म हम दोनों में संगीतकार जयदेव के साथ साहिर ने एक ऐसा फलसफा पेश किया जो आज भी मुश्किलों में जीने का हौसला देता है। ये गीत हमें सिखाता है कि जिंदगी के साथ चलने में भी असली खुशी है। फिल्म हम दोनों से मोहम्मद रफी साहब की आवाज में सुनिए जिंदगी के सफर का ये अमर गीत।

1960 का दशक साहिर के करियर की ऊंचाई थी। उन्होंने खयाम, रवि, रोशन और एन दत्ता जैसे कई महान संगीतकारों के साथ काम किया। साहिर की लेखन शैली की खासियत थी उनकी भाषा में मौजूद सादगी, जो सीधे दिल में उतर जाती थी। साहिर को उनकी रचनाओं के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। 1964 में फिल्म ताजमहल के लिए और फिर 1977 में फिल्म कभी कभी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ताजमहल में उन्होंने एक ऐसे प्यार को लफ्ज दिए जो महलों से बड़ा और वादा निभाने की कसौटी पर खरा उतरता है। एक ऐसा वादा जो हर युग के प्रेमियों के लिए एक मिसाल बन गया।

साहिर का एक और पहलू है जो फिल्म वक्त में नजर आता है। उन्होंने इस फिल्म में एक गहरी बात कही कि इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वक्त सबसे बड़ा है। उन्होंने कल की चिंता और गुजरे हुए कल के अफसोस से मुक्त होकर आज में जीने की सीख दी, क्योंकि जो कुछ भी है वो बस यही एक पल है। फिल्म वक्त से ये गीत जो हमें समय की सच्चाई से रूबरू कराता है और साथ ही जिंदगी जीने का हुनर भी सिखाता है।

साहिर की रूमानी नज्मों में हमेशा एक सूक्ष्म विद्रोह मौजूद रहा। फिल्म हमराज में उन्होंने नीले गगन के नीचे बैठकर अपने महबूब से दूर रहने की कल्पना की, लेकिन उस दूरी में भी प्यार की शिद्दत को कम नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा अपने व्यक्तिगत दर्द और भावनाओं को प्रकृति के विशाल कनवास पर उकेरा।

0: अब आते हैं साहिर की जिंदगी के सबसे चर्चित और अमर पहलू पर, अमृता प्रीतम के साथ उनकी अधूरी मोहब्बत। ये वो प्रेम कहानी थी जो हकीकत में मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन अदब में अमर हो गई। साहिर की इस अधूरी चाहत ने उन्हें कभी कभी जैसे कालजयी रचना करने के लिए प्रेरित किया। ये गीत सिर्फ एक प्रेम घोषणा नहीं है, बल्कि एक सपना है, एक ख्याल है कि अगर जिंदगी उस मोहब्बत की छाँव में गुजरती तो कितनी खूबसूरत होती। 1976 की फिल्म कभी कभी से मुकेश साहब की भावुक आवाज में साहिर लुधियानवी की कलम का सबसे बेहतरीन रूमानी इजहार।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

साहिर लुधियानवी, जिन्होंने कहा था, मैं किसी गैर के आंखों का नूर क्यों बनूं, मैं किसी और के ख्वाबों में क्यों रहूं। अपने सिद्धांतों पर डटे रहने वाले ये महान शायर 25 अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने से हमें अकेला छोड़ गया। लेकिन जाते जाते उन्होंने हमें एक और जरूरी बात सिखाई, अगर कोई रिश्ता निभाना मुमकिन ना हो तो उसे बेवजह खींचने के बजाय एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए। उनकी इस फिलॉसफी को दर्शाता फिल्म गुमराह से उनका ये विदाई गीत।

ये था आज का सफर मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी पर। आज के इस कार्यक्रम का सफर यही समाप्त होता है। मिलूंगी किसी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 13। आज का एपिसोड आधारित था गीतकार साहिर लुधियानवी पर। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरने ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 705641301 पर।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

फिल्मी गीतों पर मबनी प्रोग्राम पेश है। मुझे तू दर्द दे ऐसा जो तुझे भी मिल गया हो, मुझे तू फूल दे ऐसा जो मुरझा के खिल गया हो, मुझे तू दिल भी दे ऐसा जो अब तक सिल गया हो। मैं हूं रमेश मराठ।

एक सन्नाटा है जो मेरी उम्र के सिमटे हुए पलों की रहनुमाई करता है। तुम्हें ने तो सिखाया है चिराग बुझाने का तरीका भी। तुमने ये भी कहा था कि खुदा भी अंधेरों में सफर करते हैं, इसलिए एक सन्नाटा रखा है मैंने अपने आसपास।

अभी तक मुझको वो कहां भूले हैं। हम तो झूले हैं कितनी बहारों में, चिनारों में, सितारों में, जब कभी सफर होता था हमारा, और अपनी अपनी पसंद का तोड़ लेते थे सितारा। अभी तक गुलाबों के पत्ते हैं किताबों में, एक राज की तरह है तू मेरे हमराजों में।

0: दिन कहां गई वो रातें, प्यार भरे नगमे, मासूमियत की बातें। सब कुछ बदल बदल सा गया है, मगर मेरा तसव्वुर, मेरे ख्यालात, मेरे जज्बात खामोश तनहा ठहराव लिए। इन फिजाओं में तेरा मेरी राहों का तकना फिर से मजबूर करता है जीने को। आखिर क्यों? इसलिए शायद कि हम और गम के तूफान में बह जाएं और तड़पें, गुट गुट कर दम तोड़ दे।
1: बेवफा तुझको पहचान जाते खुदा के।

की एक फासला है, किनारे से किनारे तक, नजर से नजर तक, सांस से सांस तक। एक सफर है आवाज से आवाज तक, खाक से खाक तक, मौत से मौत तक। ए दोस्त, ये फासले, ये शर्तें, ये सफर रहने दो।

तेरा, मगर तूफान में चिराग रोशन कैसे हो? अंधेरों से रोशनी की उम्मीद, आखिर जिंदगी का हासिल क्या है? कुछ भी तो नहीं दे पाऊंगा तुम्हें, इसलिए तू

रिश्तों की बातें झूठी हैं, ये दो पल का जीवन, इसमें बिछड़ना एक हकीकत है, मिलना तो सिर्फ बहाना है। अंधेरे से मायूस ना हो, ये सफर है सूरज का, जिसमें ढल जाना एक हकीकत है, चढ़ना तो सिर्फ बहाना है।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं। हम प्रसारण करते हैं अम्बाला छावनी से, और ये सामुदायिक रेडियो आप हमेशा सुनते हैं फ्रीक्वेंसी 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसकी स्वीकृति अम्बाला के लिए मिली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। और हम बात करते हैं वो जो रखती है आपसे सरोकार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा, और उम्मीद करते हैं कि आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखते होंगे। आज के प्रसारण को अब यहीं पर समापन करते हैं। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:56। श्रोताओं, घड़ी की सुइयां गवाही दे रही है कि अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना चाहता स्टेशन रेडियो वितस्ता। सुबह की पहली किरण से लेकर अब तक शुरू का जो कारवां हमने साथ मिलकर तय किया, वे बेहद खूबसूरत रहा। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट भारत सोपोरी। एक खास जानकारी और खास विशेष जानकारी आप सभी के लिए। आज का दिन एक बेहद खास है और हसीन भी। आज जन्मदिन है मंजू शर्मा जी का, जो बसी पठाना पंजाब से हमारे साथ जुड़ते हैं। मंजू जी, आपको टीम रेडियो वितस्ता मेरी ओर से और रेडियो वितस्ता की रेडियो संचालिका कृष्णा की तरफ से और हमारे सभी श्रोताओं की ओर से जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। और आपके इस दिन को और भी यादगार बनाने के लिए ये सभी भी जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, जो है राधा शर्मा, गीता शर्मा, ममता राव, मोहन शर्मा एवं कुणाल, सोनिया और पूजा। इन सभी ने आपके लिए ढेर सारा प्यार और दुआएं भेजी हैं। उनकी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बार फिर हम सबकी ओर से जन्मदिन की अपार शुभकामनाएं। अब करते हैं बात आज के विषय की। आज ही के दिन यानी 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक शिमला समझौता हुआ था। साल 1971 के युद्ध के बाद शांति और सौहार्द का एक नया सवेरा लाने के लिए भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच आपसी विवादों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाने और शांतिपूर्ण संबंधों की एक नई नींव रखे थे। और साथ ही इसके अलावा आज का दिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी एक बड़ा मोड़ था। 2 जुलाई 1940 को ब्रिटिश सरकार ने हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया था। अंग्रेजों को लगा था कि नेताजी को कैद कर वे आजादी की आवाज को दबा देंगे, लेकिन इस गिरफ्तारी ने देश की क्रांतिकारियों और आम जनता में देशभक्ति की ऐसी आग फूंकी जिसने भारत को स्वतंत्र संग्राम में और स्वतंत्र संग्राम को और भी अधिक गति प्रदान कर दी थी। इन महान ऐतिहासिक पलों को याद करते हुए अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। उम्मीद है कि आज का सफर सुरीले गीतों और जानकारियों के साथ आपको पसंद आई होगी। रेडियो वितस्ता की लहरों पर हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहे। चलते चलते आज की शाम को विदा करते इन खूबसूरत समापन शायरी के साथ। आज की पंक्तियां यूं हैं, इतिहास के पन्नों से सीखकर हमें आगे बढ़ते जाना है। इतिहास के पन्नों से सीखकर हमें आगे बढ़ते जाना है। अमन और आजादी के दीप को हर दिल में जलाना है। गूंजती रहेगी सदा सुरों की ये पावन धरा यहां, गूंजती रहेगी सदा सुरों की पावन धरा यहां। वितस्ता के संग हर शाम को ऐसे ही महकाना है। जी हाँ दोस्तों, ये था आज का विषय और आज की पंक्तियां। जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 3 जुलाई 2026 शुक्रवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। 5:58 पर वंदे मातरम से शुरुआत करेंगे और लाएंगे आपके लिए एक प्रकाश प्रवाह, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे भक्ति संगीत, कल शुक्रवार है, कल सुनेंगे आप शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर कार्यक्रम सुनहरे पल, और 8:30 रंगमंच की ओर एपिसोड 2 पेश करेंगे
मानव मेहरा। 9:30 बजे सकूने मौसीकी पेश करेंगे नरेश शर्मा और 10:20 पर होगा शमी कपूर के ऊपर एक छोटा सा कार्यक्रम। 2 बजे आप सुनेंगे आपकी फरमाइश का ताजा अंक, शुक्रवार को आपको इंतजार रहता है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। और 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल और 7 बजे रेट्रो हिट्स एपिसोड 7 दोस्ती और रिश्ते होगा शीर्षक, पेश करेंगे आरजे किरणी। 8:30 बजे हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा और कल की कड़ी है मौसम। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजेंगे। हमारा नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। आप सब स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए 90.0 MHz पर FM रेडियो विद अस्ता। हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।